एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026। श्रोतो, इस समय सुबह के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रखे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

प्रेम और प्रसन्नता आनंद की अभिव्यक्तियां हैं। प्रेम से प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। चित अथवा चैतन्य ज्ञान की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व में आना सत की अभिव्यक्ति है। अनेकता में एकता का अभिव्यंजन अध्यात्म का सूचक है। एक अनेक का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी, क्योंकि एक अनेक में व्याप्त होकर विभासित होता है, क्योंकि एक ही सर्वोपरि है तथा नित्यानंद का स्रोत है। परमात्मा भी एक है, वे नाना रूप धारण करके इस धरा पर अवतरित हुए, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी रहीम, कभी ईसा, कभी अल्लाह, कभी वाहेगुरु बनकर इस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा सदैव वो करते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से जीवन व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि मुश्किल समय में ही अच्छे क्षणों की कीमत का पता चलता है। परमात्मा ने हमें क्या दिया या क्या दे रहे हैं, महत्व उस बात का नहीं, महत्व इस बात का है कि जो हमें दिया है क्या हम उसमें संतुष्ट हैं या नहीं। क्योंकि जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं, उसके जीवन में खुशी नहीं। एक अमीर व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी करके और अधिक पाने की चाह रखता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जो उसके पास है क्या वह उसमें खुश है अथवा संतुष्ट है। जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में रम जाते हैं उनके जीवन में थोड़े में भी आनंद बना रहता है। जो परमात्मा देते हैं उसी में संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन करते हैं, मन चित प्रसन्न रहता है। सूखी रोटी में भी प्रभु अमृत का स्वाद वो चखते हैं, क्योंकि प्रभु की मेहर ऐसे लोगों पर सदा बनी रहती है।

दिशा। सद्गुणों का खजाना प्रभु उन्हीं पर लुटाते हैं जो हर जीव से, हर जनमानस से, बिना किसी आशा से प्रेम, दया और करुणा का भाव रखता है। लेकिन हर किसी के लिए ऐसा कर पाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये चंचल मन व्यर्थ के प्रलोभनों में, भटकावों से हमेशा घिरा रहता है। जीवन में कोई परेशानी आते ही उस परमपिता पर भी विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन प्रभु ने जिस जीव की रचना की है, ये माया का खेल रचा है, उसके लिए कुछ न कुछ तो बेहतर और अच्छा सोच रखा होता है। बस विश्वास बनाकर रखना हमारे हाथ में है, क्योंकि विश्वास का अर्थ है परमात्मा।

जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। इस प्रेम को धारण करना भी सरल कार्य नहीं, क्योंकि इसे पाने के लिए मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रूरता, क्रोध को त्याग कर वाणी में मधुरता लानी पड़ती है, और ये सब आसान काम नहीं। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तभी मन की दबी हुई परतों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं। ये प्रेम सबके मन में आनंद, मिठास की भावना घोल देता है, और जब हम इस आनंदमय प्रेम का अनुभव करते हैं तो परमात्मा अपने आप ही हमारे हृदय में आ बसते हैं।

ये तो थी वंदना कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ, और आज आपने सुना भाग 200। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याका। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:00 सुनिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से लेकर 10:00 तक प्रसारित किया जाएगा। गीतों का कारवां इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों की। 11:30 पर सुनिएगा जय हिंद गीतमाला। दोपहर 12:00 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, और 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5:00 तक, और शाम 5:00 समाचार आपको सुनवाए जाएंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें पहले हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेलो जीनियस। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम मौजा गरेंदिया का। शाम 7 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सात बजकर 10 पर सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से हिमदर्शन कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर साहित्य भारती, रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे। ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लोर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है।

0: से युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता, युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश छह देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल एक मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through the guidance and mentorship. Teachers' Day is observed every year on 5th of September to mark the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, a renowned educationist, author, philosopher and former president. The occasion honors the vital role of teachers and educators in nation building. On the occasion, President Murmu will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. She will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of the country's premier institutions of higher education. Established in 1926 by eminent industrialist and philanthropist Sir Sri Ram, the college has, over the past century, nurtured generations of scholars, professionals, administrators, entrepreneurs, policymakers, and nation builders. External Affairs Minister S. Jaishankar said India is in continuous touch with both Ukraine and Russia. He said New Delhi is exploring ideas and suggestions that could help mitigate or end the conflict. Dr. Jaishankar made the remarks while addressing a joint press conference with Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski following their talks in Warsaw yesterday. The External Affairs Minister reiterated that India believes that endless war must give way to an end to war. He said wars have no winners and only lead to more deaths, destruction and global costs.
2: India believes that endless war must give way to an end to war. These are wars without winners. Every additional day means more death, more destruction, more loss to the parties themselves, and more cost to the rest of the world.
1: The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing border updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said,

सुबह सुहानी। सुबह सुहानी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आज के सुबह के सप्रेम नमस्ते। नई ऊर्जा नई जानकारियों से भरपूर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बात करते हैं आज के सुविचार की। मन में किसी के लिए शंका हमारे मन में द्वेष पैदा करती है। जितना शंका को बढ़ाएंगे वैर द्वेष उतना ही अपना पैर पसारेगा। छोटा सा जीवन है, मन मुटाव को समेटकर खुशियों के रंग जीवन में हमें भरने चाहिए ताकि दिन सुहाना हो, ताजगी से भरा हो। जी बिल्कुल, जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं। आपका दिन सुहाना और तरोताज़ा हम करेंगे और सबसे पहले सुनवाएंगे ये मीठा सा गीत।

सुबह के 7:17 और 6 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओ, आज का दिन उन महान व्यक्तियों को समर्पित है जो केवल हमें किताबों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की, गुरु यानी ज्ञान की ज्योति। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में उस दीपक की तरह होते हैं जो स्वयं प्रकाशमान होकर दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। एक अच्छा शिक्षक केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है बल्कि ये भी सिखाता है कि जीवन में सही निर्णय कैसे लेना है। शिक्षक हमारे भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान

जानते हैं, हमारी गलतियों से हमें सीखने का अवसर देते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षकों का योगदान केवल विद्यालय की कक्षा तक सीमित नहीं होता, वे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।

0: श्रोतो, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनकी जन्म जयंती प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को ही मनाई जाती है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतनी में हुआ था। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचारों, चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना भी है। वह एक महान शिक्षक थे। उनके विद्यार्थियों और सहकर्मियों के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान था। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके कुछ शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्मदिवस मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उन्होंने कहा, उनके जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय यदि ये दिन शिक्षकों के सम्मान के लिए समर्पित किया जाए तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होगी। इसी भावना के साथ शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा स्थापित हुई। उसी दिन उन्होंने कहा था कि एक सच्चा शिक्षक समाज और राष्ट्र के भविष्य को आकार देता है। तो आइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और अपने शिक्षकों का सम्मान करें।
1: मैंने

103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया है, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सुहानी। हिंदी सिनेमा के संगीत संसार में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने सुरों और धुनों से संगीत को एक नई पहचान दी। इन्हीं महान संगीतकारों में से एक नाम है सलिल चौधरी का। सलिल चौधरी केवल एक फिल्मी संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल गीतकार, कुशल प्रतिभा के धनी कलाकार वे थे। उनकी धुनों में भारतीय लोक संगीत की मिठास के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की झलक भी दिखाई देती थी। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत की विधाओं का अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग संगीत शैली विकसित की। फिल्मी दुनिया में उनका प्रवेश एक ऐसे दौर में हुआ था जब हिंदी सिनेमा का संगीत तेजी से बदल रहा था। सलिल ने अपनी अनोखी रचनात्मकता से इस बदलाव को नई दिशा दी। उनकी धुनों में कभी प्रेम की कोमलता सुनाई देती तो कभी प्रकृति की सुंदरता और आम इंसान के लिए संघर्ष की आवाज़ भी पहचानी जाती। उन्होंने कई यादगार फिल्मों के लिए संगीत दिया, जैसे दो बीघा जमीन, मधुमती, आनंद, छोटी सी बात, रजनीगंधा। इन सभी फिल्मों के गीतों ने श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी में गहराई और धुनों में भावनाओं की खूबसूरत सी अभिव्यक्ति। तो चलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोतो, हर वर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तारीख मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के रूप में भी चुनी गई थी, क्योंकि वो आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह गई। ये दिवस समाज में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने और दान देने और स्वयं सेवा के माध्यम से मानवता की सेवा करने के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और गरीबी, भुखमरी और अन्य मानवीय चुनौतियों से निपटने में सहयोग के लिए भी प्रेरित करना है। चैरिटी केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं, किसी ज़रूरतमंद को समय देना, शिक्षा में सहयोग करना, भोजन उपलब्ध करवाना या किसी कठिन परिस्थिति में खड़ा होना भी मानव सेवा का महत्वपूर्ण रूप है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

0: बारे की जानकारियां। सन 1798 में फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून प्रभाव में आया। सन 1836 में सेम ह्यूजन टेक्सास गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 1914 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच लंदन समझौता आज के दिन हुआ। सन 1944 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी स्कॉटलैंड यात्रा आज ही के दिन शुरू की थी। सन 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1997 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सन 2004 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में कराने का निश्चय किया था। आरडी भंडारे भारतीय राजनीतिज्ञ, न्यायविद और अंबेडकरवादी कार्यकर्ता आज ही के दिन 1988 को हमारे बीच नहीं रहे। विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा 1997 को इसी दिन दुनिया को अलविदा कह गई। आज ही के दिन जन्मी कुछ खास हस्तियों की बात अगर हम करें तो आज जन्मदिवस है तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदंबरम पिल्लई का, जो 1872 को जन्मी। भारतीय क्रिकेटर फिरोज बलिया 1910 को आज ही के दिन पैदा हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रेमन मैगसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय लक्ष्मी नारायण रामदास 1933 को आज ही के दिन पैदा हुए।
1: हंसो मत, बोलो।

शुद्ध कार्यक्रम के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और सुनते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के लगातार संपर्क में हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान तलाश रहा है। इसरो ने ईओएस 5 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक

0: उसे प्रक्षेपित किया है। ये भारत के जियोसिंक्रोनसिक कक्षा में प्रक्षेपित होने वाला इमेजिंग उपग्रह है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 और विमान राहत सामग्री के साथ भेजे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त बैंकिंग तरलता को कम करने के लिए 7 सितंबर को 7,00,000 करोड़ रुपए की 30 दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी करने की घोषणा की है। अब कुछ खेल समाचार। महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप में भारत आज दुबई में पाकिस्तान के साथ ग्रुप चरण का मुकाबला खेलेगा। भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में भारत की किदांबी श्रीकांत चीन मास्टर सुपर के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली च्युंग से मुकाबला कर रहे हैं। टेनिस में यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज ने ब्यू यूविंग को हराकर 4th दौर में प्रवेश कर लिया है। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण सड़कें प्रभावित हुई हैं। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रोताओ, ये तो था आज की सुबह सुहानी कार्यक्रम का आखिरी चरण।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग। शुभ प्रयाग कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत लेकर हम हर बार की तरह हाजिर हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कश्मीरी राम और साथियों के गाए इस कृष्ण भजन के साथ।

श्रोत कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर यानी कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। इससे संबंधित अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित डॉक्टर शौर्य कालिया बाल रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय फिर से नोट करें, रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 और समय सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फ़ोन करना बिल्कुल ना भूलें रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी इसे सुना जा सकता है। श्रोता सूचना समाप्त हुई। शोपिया कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए चंपा शर्मा को।

0: आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक

0: की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
4: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश

0: के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
1: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, यह दिन सिर्फ सराहना करने का एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आए कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया,

0: जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम के युगल सुरों में खुदगर्ज फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत राजेश रोशन का था। गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुने दिल है के मानता नहीं, इस फिल्म का ये गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

8:43 हुए हैं। आपने ट्यून इन किया 103.4 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम सुन रहे हैं गाने सुहाने।

0: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
1: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
0: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
1: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
7: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
8: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
9: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि।

0: तसल्ली के भी नखरे बहुत हैं, लाख कोशिशें कर लो मिलती ही नहीं। श्रोताओं गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। आज के प्रोग्राम में आपसे बातचीत करने के लिए हम स्टूडियोज में बिल्कुल हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। स्टूडियोज में कॉल करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391-01892224391। आज शिक्षक दिवस है और आज हमारा बातचीत का विषय भी कुछ ऐसा ही है। आपके जीवन में ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? जी हाँ, अगर आप भी इस विषय से संबंधित बातचीत हमारे साथ करना चाहते हैं तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए नंबर हमारे स्टूडियोज़ का। जी, शिक्षक की हमारे जीवन में बहुत भूमिका रहती है, अहम भूमिका रहती है। और शिक्षक कौन होते हैं? सबसे पहले हमारे माता पिता, जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। सबसे पहले गुरु जो है हमारी माता होती हैं, और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, नाते जो हैं वो हमसे मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोगों से मिलते जाते हैं हमें शिक्षाएँ मिलती जाती हैं, और इस तरह फिर हम पहुंच जाते हैं स्कूल, और स्कूल में मिलते हैं हमें टीचर्स, प्यारे प्यारे से टीचर्स। क्या कहते हैं वो, चलिए सुनते हैं पहले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी स्वागत है, और बताएं क्या कहेंगे आज के विषय के संबंध में।
1: आज के विषय के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षक हमारे जो हैं होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। सबसे पहले तो गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु की वजह से हम जो हैं अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे गुरु जो हैं हमारे अंधेरे से जो है रोशनी दिखा देते हैं।
0: जी, तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जिनको आप आज भी याद करते हैं?
1: तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में जो है कोई एक गुरु रहे हैं जिनने कि उनने मुझे, सबसे पहले तो मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो मुझे हिंदी बोलना नहीं सका।
0: अच्छा।
1: तो और किसी कारण बस मैं स्कूल नहीं पाया, तो मुझे घर बैठे थोड़ी थोड़ी हिंदी सिखाती थी। एक टीचर आए थे हमारे घर में।
0: जी, आप उनका नाम भी ले सकते हैं, उनके उनको भी अच्छा लगेगा,
1: पर वो इस दुनिया में नहीं रहे हो।
0: चलिए, फिर भी उन्हें याद किया जा सकता है।
1: जी, तो एक मैं एक दो बार आए थे जगिंदर नाम था उनका, तो उनने मुझे इसका कि जैसे कि घर में कि वेजिटेबल को क्या बोलते हैं, जैसे कि सब्जी का वगैरह, मतलब घर बैठे में एक दो हफ्ते तक मैंने वही बात सीखी। तो आज तक मुझे वो याद है,
0: जी।
1: है क्योंकि हमारे जो गुरु जो होते हैं कि हम महसूस करते हैं कि जब मैं थोड़ा अपने होश में बड़ा हुआ तो मैं मुझे समझ आए कि हाँ कि गुरु जो, अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हमें कुछ नहीं रहता। क्योंकि गुरु के बिना, हालांकि माँ बाप तो हमें बोलना चाहना सिखाते हैं, लेकिन जो बोलना किस तरह से बोलना है और किस तरह से हमें अपनी भाषा का उपयोग करना, तो वो हमें गुरु कर सकते हैं। उनकी सेवा तो कोई नहीं कर सकता।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, और

0: आपकी बात सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। बाकी श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391, ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: बलदेव सिंह पटियाल जी, मैं अर्जुन जी बोल रहा था, गड्याड़ा पंचायत से।
0: जी स्वागत आपका। और बताएं कि आपके जीवन में ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है?
1: हमारे तो जीवन में दो तीन गुरु जी हमारे आज भी हम उनको याद करते हैं। एक तो अमर सिंह दीवान जी, जैसे तो स्वर्गीय और दूसरे मलाप सिंह मास्टर अपने पालमपुर थे
0: जी,
1: तो आज भी हम उनसे मुलाकात करते हैं तो हम चरण स्पष्ट करते हैं उनकी।
0: जी, तो आपको उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती थी जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेकर उतारते हैं?
1: हाँ जी, हमारे को तो ये शिक्षा देते थे कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, मान सम्मान रखो और अपने जीवन में संघर्ष करो।
0: जी,
1: जीवन में जो मेहनत करते वो फल पाता है।
0: जी,
1: ऐसी ऐसी बातें बताते थे हमारी को में तो पिटाई भी फूल होती थी हमारी।
0: जी, गुरु सेवा भी बहुत होती थी।
1: आज पता लगता कि आज उनकी पिटाई की फूल बरसते हैं।
0: जी देखिए, पहले का समय होता था जब राजा महाराजाओं के समय की अगर हम बात करें तो राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे, तो किस तरह से वो आश्रम में रहा करते थे गुरुओं के बीच में, तो गुरु जिस तरह से उनको कहते थे उसमें ये नहीं देखा जाता था कि ये राजा का बेटा है या फिर एक सैनिक का बेटा है, तो उन्हें हर तरह से शिक्षा लेने के लिए सभी को एक समान रखा जाता था, चाहे उन्हें लकड़ियाँ चुनने जाना हो, पानी भरने जाना हो या फिर गुरुओं की सेवा करनी हो या साफ सफाई की व्यवस्था हो, तो इस तरह का कोई भी वो नहीं होता था। और अगर उनकी शिक्षा में पढ़ने लिखने में अगर कोई कमी होती थी तो उन्हें दंड भी दिया जाता था, और ये दंड आज तक चलन में था लेकिन अब बंद हो गया है।
1: अब तो एक हमारे

0: हिंदुस्तान में अभी तो गुरुकुल चल रहे हैं, शिक्षा बच्चे पढ़ रहे हैं जी, बड़ी खुशी की बात होती है जी। आज भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पुराने प्राचीन काल की, अपने क्या बोलते हैं आपने, इसमें बिहार में भी है गुरुकुल और यूपी में भी है
1: जी।
0: तो बड़ी खुशी की बात होती है कि बच्चे कई यहाँ से भी हमारे कई बच्चे वहाँ पढ़ते हैं।
1: चलिए अच्छी बात है। और उसमें जो आधुनिक शिक्षा है उस तरह की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्राचीन परंपरा को जोड़ कर रख रहे हैं और शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी बात है
0: जी।
1: चलो जड़ों से जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद
1: जी। बाकी श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं, 01-892-224-391 ये है हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: जी स्वागत आपका, और बताएं क्या कहने चाहेंगे आज के विषय के संबंध में।
2: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, गुरु की अहमियत तो हर एक इंसान के जीवन में बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी सीखना होता है हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। उसमें गुरु हमारी माँ भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, सबको मतलब अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग क्षेत्र में सबकी ज़रूरत पड़ती है
1: जी। तो शिक्षा जो है हम पूरे जीवन भर हम सीखते हैं, जो सीखता है वही जीता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा जो है हमने सिर्फ अपने टीचर से ही ग्रहण की है। आजकल हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब हम उनसे कुछ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये बात भी सही कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक छोटा बच्चा है हमें समझा रहा है, अगर लगता है कि हमें समझ की बात कर रहा है तो हमें वो सुननी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह कोई हमारा पड़ोसी हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आप कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं या कहीं घूमने फिरने गए हैं, वहाँ भी आपको कोई ना कोई शिक्षा मिल सकती है। कहीं मंदिरों में जाते हैं तो गुरुजन बैठे होते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं तो ऐसा लगता है जीवन में कभी हमने ये चीज़ें सुनी ही नहीं है। और
2: हाँ
1: जब
2: जी,
1: हम उनको सुनते हैं तो हम बहुत प्रभावित होते हैं उनकी बातों से। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ?
2: जी बिल्कुल हुआ है। मैं एक आपको बताऊं, मैं एक भजन गायक के रूप में अपने गुरुजी से शिक्षा लेने जाता हूं। 2019 में कोरोना टाइम जब आया था तब लॉकडाउन की वजह से कहीं आना जाना बंद हो गया था। उस समय पे मैंने अपने भजन गायक के रूप भजन गायकी में गया मैं, और अपने गुरुजी के यहाँ पे जाके मैंने भजन सीखे। तो भजन और गाना सीखा तो सीखा, साथ में उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, जो जीवन पर चलने की जो राहें बताई, वो हमें आज तक काम आ रही है और आगे हमेशा मतलब हम तो यही चाहेंगे कि जो हमें अपने गुरुजी से ग्रहण करने को मिली है अच्छी अच्छी बातें, हम उनको उनकी बातों पर खरे उतरे और आगे बढ़ते रहें।
1: जी चलिए।
2: तो मैं तो अपने भजन गायक के गुरुजी है ना बसंती लाल जी पांचाल, उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं तो हमेशा उनकी आदर करता हूँ, उनकी क्या मतलब सभी शिक्षकों की आदर करता हूँ, बस सबसे मेरे ऊपर मतलब वही है।
1: जी चलिए, आपने अपने शिक्षक का नाम लिया और बहुत अच्छी बात है, हम याद कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों को जिनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, और उनकी याद आप भी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जहाँ भी होंगे वो
2: जी बिल्कुल अभी भी है, वो अभी अब भी हमारा भजन प्रोग्राम होता है ना तो हम साथ में ही जाते हैं और वो खुद हारमोनियम बजाते हैं और हम गाने के लिए हमें बोलते हैं।
1: जी चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे संग सांझा की। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद आपका भी।
1: जी श्रोताओ, आप भी अपने विचार हमारे संग साझा कर सकते हैं। 01-892-224-391 ये हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, 01-892-224-391 ये नंबर है, और बताएं कि आपके शिक्षक से आपको क्या प्रेरणा मिली। टीचर्स डे आज हम मना रहे हैं।

श्रोता एक गुजारिश रहेगी कि जिन श्रोताओं ने पिछले हफ्ते शनिवार को हमें कॉल किए हैं वो हमारे आज के प्रोग्राम में कॉल ना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और उनके विचार हम तक पहुंच पाएँ। हमारे आकाशवाणी का परिवार भी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो परिवार कैसे बढ़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता ने अलग अलग जगहों से हमें कॉल करेंगे और नए नए श्रोता जब हमें मिलेंगे तो हमारा परिवार और विस्तृत और विस्तारित होता जाएगा।

लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9:18 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और लाइव फोन इन कार्यक्रम 9:30 से जारी रहेगा। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से नई तकनीक व आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन व जिज्ञासा विकसित करने का किया आह्वान। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रही है जनता, सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, मॉनसून सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में भाजपा रही नाकाम, मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष ने किया शोर शराबा। और लाहौल स्पीति जिले में करपट गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर झूले के सारे फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए मजबूर। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इधर प्रदेश में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता लोक भवन में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में सरकारी स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 और तकनीकी शिक्षा विभाग के 5 शिक्षक शामिल हैं। इस बीच शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा संवाद भी आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं में अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जिस तरीके से नियुक्तियों में मनमाना रुख अपनाया है, वो सिर्फ उनकी कार्यप्रणाली पर ही नहीं बल्कि उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों में वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद व टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जा रही है। घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दथोल और पपलाहा में इस योजना के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने 14 ग्राम पंचायतों के लोगों से संवाद कर इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अति निर्धन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को 20 सितंबर से पहले पात्र परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये टीका सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऊना जिले में भी अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। विस्तृत ब्यौरे के साथ

0: हमारे ऊना जिला संवाददाता।
1: भारत में प्रतिवर्ष ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नामक विषाणु से उत्पन्न सर्वाइकल कैंसर से लगभग 1.25 लाख महिलाएं ग्रसित होती हैं, जिनमें से लगभग 2/3 महिलाओं की मृत्यु हर वर्ष इस रोग से हो जाती है। ऊना जिला में इस बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 वर्ष की आयु के किशोरियों का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से अब तक 1,250 से अधिक किशोरियों को वैक्सीन लगाई गई है। ऊना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि HPV वैक्सीन सुरक्षित एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित टीका है और सर्वाइकल कैंसर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 4,500 पात्र बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
3: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
2: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
4: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
5: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर मॉनसून सत्र के दौरान आम जनता से जुड़े विषयों को उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो भी विषय सदन में उठाए उनका सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। विनय कुमार ने आरोप लगाया कि मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ही विपक्ष ने शोर शराबा किया। दूसरी ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो जानकारी RTI के माध्यम से मिल रही है, सरकार ने उसे सदन में उपलब्ध नहीं करवाया। लाहौल स्पीति जिले के करपट गांव के लोग बाढ़ के कारण मुख्य पुल के डूब जाने से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समय पर फसल के मंडी में ना पहुंचने से किसान चिंतित है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि पुल के अभाव में लोगों को जान जोखिम में डालकर झूले का सहारा लेना पड़ रहा है।
7: मयाड़ घाटी के करपट गांव में किसानों की परेशानी अभी खत्म नहीं हो पाई है। गांव का मुख्य पुल अब भी पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में किसान झूले के सहारे अपनी गोभी की फसल को सड़कों तक पहुंचा रहे हैं। गोभी की फसल को करीब 2 किलोमीटर पैदल ढोना पड़ रहा है, जिसके लिए मजदूर एक पेटी गोभी ढोने के लिए 80 से 100 रुपए तक ले रहे हैं। वहीं व्यापारी भी किसानों को करीब 18 रुपए किलो का भाव दे रहे हैं। खेतों में गोभी ओवरसाइज होने लगी है। समय पर फसल के मंडी न पहुंचने से भी किसान चिंतित हैं। इसी फसल से ही उन्हें बच्चों की पढ़ाई और परिवार चलाने की उम्मीद थी। अब वही फसल चिंता का कारण बन गई है कि महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर झूला पार कर रही हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अतिरिक्त झूला लगाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को स्थायी राहत पुल और सड़क बहाल होने के बाद ही मिल सकेगी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र UGC नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा व सिरमौर जिले में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम होने की संभावना है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस बार मॉनसून सीजन में सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, वर्ष 2027 के चुनावी समीकरणों में उलझा मंत्रिमंडल विस्तार। दिल्ली में हुई बैठकों के बाद भी कैबिनेट विस्तार पर संशय बरकरार, कई मंत्रियों के बदल सकते हैं विभाग। पंजाब केसरी का शीर्षक है, जन्माष्टमी पर पवित्र मणिमहेश में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दैनिक जागरण

0: लिखता है नालागढ़ की चिकनी खड़ पर बनी झील, चार पंचायतों को खतरा। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की एक खबर ध्यान खींचती है, हिमाचल में 10 साल में 710 ग्लेशियर झीलें बढ़ी, इनमें 9 बेहद संवेदनशील। हिमाचल दस्तक ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर शीर्षक दिया है, प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा बढ़कर 605 करोड़ पहुंचा, बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं सुलझ रही व्यवस्था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से नई तकनीक व आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन व जिज्ञासा विकसित करने का किया आह्वान। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रही है जनता, सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, मॉनसून सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में भाजपा रही नाकाम, मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष ने किया शोर शराबा। और लाहौल स्पीति जिले में करपट गांव के लोग जान जोखिम में डालकर झूले के सहारे फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए मजबूर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले, सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। और श्रोता, हम बात कर रहे हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक कौन हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा जीवन में प्रभावित किया है। 01892224391 ये हमारे स्टूडेंट। हेलो, नमस्कार।
4: नमस्ते मैडम जी, मैं साक्षी बोल रही हूँ नूरपुर से।
3: जी साक्षी, स्वागत है। और बताएं कि आपके जीवन में बहुत बढ़िया शिक्षक का क्या महत्व है?
4: हाँ जी,
3: आपके फेवरेट टीचर कौन है साक्षी?
4: मेरे अच्छे टीचर, एक मेरे सर थे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे सर पता कौन मेरे आज मेरे को ज्यादा ना, एक मैडम आती थी मेरे को, ज्योति मैडम पढ़ाने, वो अच्छी टीचर, मेरे बहुत अच्छी टीचर थे। हाँ, घर में आते थे वो।
3: अच्छा, तो आपको पसंद है वो?
4: हाँ जी
3: जी, चलिए अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर?
4: आपको और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं।
3: जी चलिए, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके शिक्षक से आपको क्या प्रेरणा मिली। हेलो हेलो
5: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
5: जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ, त्रिपुरा से।
3: जी स्वागत अविनाश जी, और बताएं कि आपके जीवन में ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है?
5: जी देखिए, हम सबके जीवन में तो पहले तो माता पिता ही सबसे शिक्षक होते हैं, उसके बाद फिर हम जब शिक्षालय में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम सबको आने को शिक्षक मिलते हैं, लेकिन इन सबके बीच में अगर एक शिक्षक को चुनना है तो मैं अपने जो हमारे टीचर थे वो थे नरेंद्र दास जी, उनके दिखाए गए रास्तों में मैं चला और मैं अभी अब तक आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छा भी लगता है। और जीवन के मोड़ में कभी कभी भी मैं किसी भी दिक्कत में पड़ता हूँ तो उनसे सलाह लेकर ही आगे कुछ काम करता हूँ, बहुत ही अच्छा सलाह देते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए देखिए, अंधकार से उजाले की तरफ वो लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर शिक्षक के हमें सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ शिक्षक मतलब कि
3: जी, सभी जीवन में तो हमें बहुत सारे लोगों ने शिक्षाएं दी हैं, हमारे माता पिता जैसे आपने कहा, और बहुत सारे टीचर्स हमें मिले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, जिनको हम हमेशा याद करते हैं जब भी हम मुसीबत में फंसते हैं, कुछ सलाह हमें चाहिए होती है, तो हमें लगता है कि वो हमारे सामने होते तो शायद हमें बहुत अच्छी एडवाइस देते, बहुत अच्छी सलाह हमें देते, है ना?
5: जी,
3: चलिए अच्छी बात है। और कुछ और कहना चाहेंगे?
5: जी तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए

0: शिक्षक वो जो है वो हम सबके लिए वो धरोहर के काम करते हैं, हम सबको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाते हैं,
1: जी,
0: समझ रहे हैं
1: तो
0: कैसे?
1: आप एक आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी तकनीक बदल रही है और जो AI का ज़माना चल रहा है, तो इसमें शिक्षक की भूमिका किस तरह से बदल रही है आपके हिसाब से?
0: जी, शिक्षक की भूमिका देखिए, आजकल हम शिक्षक को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। अब आजकल के बच्चे देखिए शिक्षक को अपने दोस्त की तरह ही मान रहे हैं, क्योंकि अब देखिए वो उनको इस तरह से सम्मान नहीं दे रहे हैं जिन जिन जिन सम्मान को उनको चाहिए। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए AI का भले ही जमाना आ चुका है, लेकिन शिक्षक का स्थान हमेशा ही ऊँचा रहता है, और उनके
1: जी
0: स्थान को जी वो तो उनका महत्व को हमें समझना चाहिए। क्योंकि देखिए AI हाँ भले ही हमें तुरंत ही कुछ भी मतलब सलाह मांगे दे सकते हैं, लेकिन
1: जी
0: लेकिन
1: लेकिन
0: ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका अनुभव देखिए AI अपना अनुभव कोई नहीं बता सकता, लेकिन शिक्षक जो है वो देखिए अपना अनुभव से जो हम शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं वो हमें उन्हीं से ही मिल सकता है।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं, 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और क्या क्या लगता है आपको शिक्षक के बारे में? हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना।
2: मैं तनुश्री बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से।
1: और स्वागत है, महाराष्ट्र से बहुत दूर से कॉल करते हैं। बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज टीचर्स डे के दिन?
2: जी मैम, मतलब आपको पहले तो आपको टीचर डे की बहुत सारी शुभकामना।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और मैम मेरे भी टीचर इतने मतलब अच्छे हैं ना, मतलब मैं हारमोनियम सीखती हूँ ना, हारमोनियम और गायन। तो ये सर ने मुझे हर मतलब उसमें बहुत सपोर्ट किया है, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना मैम, जब एक रास्ते से हम जा रहे थे तब हमारे पैर एकदम थक जाते हैं, पर पीछे से हाथ मतलब कंधे पर रखने वाले एक ही इंसान होता है, वो होता है गुरु।
1: जी, और आप कौन सी
2: मतलब
1: कक्षा में पढ़ती हैं तनु?
2: मैम मैं 10वीं से नहीं मतलब 10वीं से क्लास छोड़ दी है, मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ ना, तो वही सिखाने मुझे सर आते हैं।
1: जी, तो शास्त्रीय संगीत आप सीख रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने अपनी शिक्षा को आगे क्यों नहीं बढ़ाया?
2: कई कारणवश नहीं हो पाया,
1: चलिए,
2: थोड़ी सी आंखों में दिक्कत हो गई ना, तो नहीं कर पाई आगे की पढ़ाई।
1: चलिए, जिस भी क्षेत्र में अब आप जा रही हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। आपने अपने प्रोग्राम में हमारे संग इतने अच्छे अच्छे विचार साझे किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: जी श्रोताओ, अपने शिक्षक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी? 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार मैम,
1: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
3: हिमानी बोल रही हूँ रैप से। सर्वप्रथम
1: जी, हिमानी जी, स्वागत है, और बताएं क्या कहेंगी आज के दिवस के अवसर पर?
3: तो सभी को शिक्षक की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा जिंदगी में कौन सा पल नहीं है जब हमें टीचर की जरूरत नहीं होती है। मतलब
1: जी
3: जब से हम आंखें खोलते हैं इस दुनिया में, जन्म लेते हैं, तब से लेकर अंतिम सांस तक कोई ना कोई हमारा शिक्षक बनता है। सर्वप्रथम जैसे आप पहले से बता रहे हैं, माता पिता तो होते ही हैं, शिक्षा
1: जी
3: के लिए गुरुजन होते हैं, फिर कार्यालय में जाते हैं तो वहां भी शिक्षक मिलते हैं, वो भी हमें कार्यालय का कार्यभार अच्छे से करना सिखाते हैं।
1: जी
3: तो हर पड़ाव पे जो है वो शिक्षक महत्वपूर्ण है। और रही आज एक टीचर को याद करने की बात, तो मैं याद करूंगी श्रीमती रीता महाजन जी को, जो कि लगरोटा बगुआ से थे। और जब हम 9th में पढ़ते थे, वो हमें 9th में पढ़ाते थे हिस्ट्री पढ़ाते थे,
1: जी
3: तो वो हम लड़कियों की ना एक अलग से क्लास लेते थे।
1: जी
3: और आज के दौर में मुझे लगता है कि सभी फीमेल टीचर्स को ऐसा करना चाहिए। वो हमें सिखाते थे कि लड़कियों की खूबसूरती मतलब चेहरे से नहीं है, जो लड़कियां मेकअप करती हैं, सजती संवरती है, ये खूबसूरत नहीं है।
1: जी
3: जिस तरह लड़कों की खूबसूरती उनकी कमाई से है, उस तरह लड़कियों की खूबसूरती भी उनकी कमाई से है। तो इसलिए आपने अब 9th और 10th की एज होती है, जब बच्चियां जो है भ्रमित होती हैं,
1: जी
3: गलत दिशा पकड़ लेती है कोई बच्चियां, कोई तो बहुत अच्छे इसमें जाती है, टारगेट लेके चलती है, लेकिन मैक्सिमम गर्ल्स जो इस तरफ हार्मोन चेंज की वजह से, मैं मेडिकल में हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि हार्मोनिकल चेंज की वजह से लड़के और लड़कियां प्रभावित होते हैं।
1: जी
3: तो वो स्पेशल क्लास मैम हम लड़कियों की लेते थे और हम

0: बोलते थे कि अपना भविष्य देखकर डिसीजन लेना और सबसे पहले अपने पांव पे खड़े होना, कि जब आपको कभी इन फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो आपके पास पैसा होगा, अर्निंग होगी, जिस वजह से आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं।
1: जी बहुत
0: और
1: अच्छी
0: आज
1: बात।
0: उन्हीं के प्रेरणा की वजह से मैं और मेरी सिस्टर दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, और आज भी हम रीता महाजन जी को बड़े दिल से याद करते हैं। पता नहीं वो अब इस दुनिया में है या नहीं है, बट मेरा दिल से उनको कोटि कोटि नमन है कि वैसे शिक्षकों ने हमें गाइड किया था।
1: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतनी प्रभावित हुई हैं। और अब यही प्रश्न आपसे कि जो बदलती तकनीक है और AI के ज़माने में शिक्षक की भूमिका किस तरह से बदल रही है आपके हिसाब से?
0: शिक्षक की भूमिका ये है कि जैसे कि आजकल जैसे बच्चे प्रभावित हुए हैं गैजेट्स के साथ में, तो टीचर्स को बताना है कि ये गैजेट जो है कि हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसानदायक हैं। अब देखो, अब आप जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हम भी नोटिस करते हैं कहीं जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सेल्फी खींच के जो है पोस्ट कर देते हैं, और मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगी, और सोशल मीडिया में भी बताया जाता है कि ये जो एक बार क्लिक आप कर लेते हो ना, ये डिलीट नहीं होती है, तो
1: जी
0: इसलिए सोच समझ कर अपनी पिक्चर जो है, अपनी पिक जो है वो इसमें डालें। और टीचरों को स्पेशल, जैसे वो रीता महाजन जी सिर्फ हमें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आते थे, तो लेकिन 5 मिनट अगर शिक्षक बच्चों को जागरूक करे, और जितना प्रभाव शिक्षकों के बोलने का पड़ता है बच्चों पे, उतना शायद पेरेंट्स अगर बोले उतना नहीं पड़ता है।
1: जी
0: टीचर जो समझाते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव बच्चों पे डालता है। और जिन्होंने मतलब अपना टारगेट सेट करना है और ऊंचाइयों को छूना है, उनके लिए वो 5 मिनट का था, एक ही दिन का उन्होंने सुना हो लेक्चर, वो कामयाब हो जाते हैं।
1: जी और
0: और जिन्होंने ये
1: बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं कि उनकी कही बातें इतनी हमारे दिमाग में प्रभाव डालती हैं कि उनके पढ़ाए हुए विषय ही हमारे फेवरेट विषय बन जाते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में आगे चुनना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी विषय है, वो जिस की चीज़ से हमें ओतप्रोत करते हैं। मान लो कि कोई हमें, जैसे आपने बोला, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे वो हिस्ट्री इतना अच्छा से पढ़ाते हों कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की रुचि जागृत हो जाए, आगे हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी विषय में करें, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, जो टीचर प्रभाव डालता है तो बच्चे उसको ध्यान देते हैं, सुनते हैं और उसकी हर बात मानते हैं।
1: जी चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रुतो न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आकाशवाणी धर्मशाला को लाइक करेंगे और हम तक पहुंचेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी,
1: मैं राकेश गुप्ता दाड़ी से बोल रहा हूं।
0: जी स्वागत, और क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में?
1: मैडम, सबसे पहले तो मैं टीचर के लिए कहूंगा कि हमारे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित कर हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई एवं उनके चरणों में सादर नमन। मैडम
0: जी, सादर नमन जो है हम हमेशा करेंगे अपने शिक्षकों का, जिन्होंने हमें इस जगह तक पहुंचाया है। हम उनके विचारों से हमेशा ओतप्रोत हैं और उनके विचार हम आगामी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके हिसाब से?
1: मैडम जी, आजकल क्या है ना, आज सबसे बड़ी चुनौती, जब हम पढ़ते थे ना मैडम जी, तो हमें स्कूल में कुछ नहीं आता था तो मार पड़ती थी, ठीक है ना। अब हम घर में जब आके बताते थे कि मार पड़ी, तो घर में हमें और ज्यादा मार पड़ती थी, ठीक है
0: जी।
1: मतलब ये फर्क है। आजकल क्या हो गया कि स्कूल में बच्चों को बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते, अगर गलती से हाथ लगा दिए तो सोशल मीडिया है, कुछ नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे और सोशल मीडिया में दे देंगे। तो जब तक मैडम जी, अगर गलती से अगर टीचर बच्चों को मारते भी है ना जी, तो उनकी जीवन को मतलब कि उज्जवल बनाने के लिए करते हैं ना जी।
0: जी
1: ठीक है ना जी, कोई ज्यादा तो कोई मारेगा नहीं, हाथ लगा भी दिया तो मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है इसमें।
0: तो
1: आजकल के समय में मैडम जी, शिक्षकों को ना ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। क्योंकि कहने से देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पुलिस वाले किसी को, चोर को या किसी को अंदर जाके मारेंगे नहीं, कुटेंगे नहीं, तो उनको कैसे सुधार होगा?
0: जी
1: ठीक है जी मैडम। तो मेरा कहने का मतलब ये कि चलो कुछ नहीं, ज्यादा तो कोई टीचर नहीं मारेगा आजकल, पर चलो थोड़ा बहुत।
0: चलिए आपसे एक और प्रश्न करते हैं, अगर आपको किसी पुराने शिक्षक को धन्यवाद करने का अवसर मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
1: मैडम, हम तो ना जो हमारे समय में टीचर थे, मैं उनको आज भी याद करता हूँ और उनको दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमें जो उस टाइम ना हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ा प्रोत्साहित करते थे और हम जहाँ तक भी पहुंचे, मैं भी एजुकेशन बोर्ड से सेवन रेट हुआ, मैडम सेक्शन ऑफिसर की बोर्ड से हुआ रिटायर, तो हमें उन्होंने कुछ ना कुछ हमें ज्ञान दिया, ये दिया, ठीक है ना जी, और उनके हमें बताए हुए रास्ते में हम चले तो अच्छी पोस्ट से हम सेवन रेट हुए मैडम
0: जी,
1: ठीक है ना। तो हम उनको आज भी हम उनको याद करते हैं और उनका धन्यवाद करते करते हैं मैडम जी। सबसे बड़ी बात ही है नहीं। और एक शिक्षकों लिए एक और बात कहना चाहूंगा ना अंत में, वो देखो एक जगह रह के ना दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात तो ये ना जी कि आप पढ़ा रहे हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं कि कहाँ का उनके, देखो आज किसी भी पोस्ट में कोई पहुंचा हुआ ना, चाहे IAS ऑफिसर है, चाहे IPS, जो भी जिस भी लाइन में पहुंचा होगा ना, ये डॉक्टर है, पहुंचा तो टीचर की वजह से ही है ना जी।
0: जी बिल्कुल
1: ना जी। और घर में उनका ठीक है, पेरेंट्स का तो सहयोग मिला ही है, पैसे तो घर वालों ने खर्च किए हैं, पर सहयोग तो टीचर का भी मिला ही है ना सबसे ज्यादा।
0: जी जी,
1: तो जिस भी है ना जी, जिस भी पोस्ट में पहुंचा होता पहुंचे तो टीचर की वजह से ही है ना जी,
0: जी।
1: तो हम उनको हमेशा याद करते हैं और उसको हम उन टीचर का हमेशा धन्यवाद करते हैं मैडम जी।
0: जी जी, चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं 0189224391, ये हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, बता सकते हैं कि आपके जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका रही है। हेलो,

0: नाम भी ले सकते हैं
1: मास्टर
0: इनका।
1: देवी सिंह। हाँ जी, मास्टर अमचंद जी। हाँ,
0: जी।
1: ये इंग्लिश के टीचर थे, और देवी सिंह मेरे मैथ के टीचर थे, और उन्होंने पढ़ाया जेड़ा जी आई अज भी असा बच्चे जो जे पढ़ाइए तो मतलब उन्होंने अज भी मतलब उस पढ़े हो हाँ अज भी बच्चे पढ़ाई सकते
0: जी जी बहुत
1: उन्होंने
0: अच्छी बात
1: पढ़िया
0: है
1: जेड़ा
0: जी।
1: जिंदगी च कभी भूल ही नहीं सकते ना उन्होंने बार बार नमस्कार कर दे जन्म वंदना कर दे।
0: जी चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके गुरुओं के प्रति आपका सम्मान। और बाकी श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं, 10 मिनट का समय बचा है। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और आपके शिक्षकों से आपको क्या प्रेरणा मिली, ये विषय है आज के प्रोग्राम का।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
0: मेरा नाम करण पठानी है, एडवोकेट मैं शाहपुर से बोल रहा हूँ
1: जी। स्वागत है आपका, और क्या कहना चाहेंगे आज टीचर्स डे के संबंध में?
0: मैडम, टीचर्स डे के संबंध में मेरा इतना ही है कि जो टीचर सिखाते हैं, हमारा जो जीवन का मूल आधार है वो हमारे टीचर ही जो है वो हमें उस वहां तक मूल मंजिल तक पहुंचाते हैं
1: जी।
0: जो ज्ञान जो उन्होंने हमें सिखाया है, शायद वो हम आज इस समाज में उसी ज्ञान की धारा के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ सभी टीचरों को जिन्होंने अलग अलग समय में हमें पढ़ाया है और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद की है
1: जी। देखिए, एक ही कक्षा में 50-60 विद्यार्थी होते हैं, तो टीचर्स का सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई उनकी रुचि के हिसाब से जो उनका विषय होता है उसी में आगे अपना करियर बनाता है।
0: जो वो जो टीचर का जो थप्पड़ है ना जी, वो बच्चे के लिए उस टाइम की सबसे बड़ी मेडिसिन है
1: जी। आज आप टीचर्स डे में कौन से टीचर को याद करना चाहेंगे आपके?
0: मैं अपने सभी टीचर्स को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज जिनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन के ऊपर आज हम चल रहे हैं, और हम आगे समाज में जो जो उनके जो जो उन्होंने हमें सिखाया है हम उसको आगे समाज में ढालने का प्रयास कर रहे हैं।
1: जी, तो आपने कभी कोशिश की कि जो शिक्षाएं आपको अपने अध्यापकों से मिली आप आगे अपने बच्चों को या फिर अपने आसपास के लोगों में भी बांटे?
0: मैडम, ये जो कोशिश है हमारा निरंतर प्रयास रहता है, जो शिक्षाएं हमें मिली हम वही शिक्षाएं आगे अपने बच्चों को भी दे। मगर अब बच्चों में भी थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, इस चीज का फर्क है जो हमारे टाइम के एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में
1: जी।
0: आज की जो एजुकेशन है वो सीमाओं में बंधी हुई है, बच्चों को हाथ नहीं उठाना, बच्चों को ये नहीं बोलना, तो इसमें बहुत फर्क है हमारे टाइम के एजुकेशन में
1: जी।
0: आज के
1: तो फिर आपको क्या लगता है कि आज के समय में शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: आज के समय शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, बच्चे को भी पढ़ाना है, रिजल्ट भी देना है, मगर अपनी सीमाएं उसकी तय कर दी गई हैं
1: जी। तो फिर किस तरह से व्यवहार उन्होंने अपना परिवर्तन करना है ताकि बच्चे पढ़ भी लें, आगे भी जाएं और उनको भी याद रखें आपके हिसाब से?
0: टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक करता है, शायद उतनी उसके माँ बाप भी ना करते हो। जो मूल आधार है बच्चों का, जो स्टार्टिंग से करना है, वो शिक्षक की बहुत बड़ी मेहनत होती है, शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज को खड़ा करने में
1: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने हमारे संग साझा की, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। श्रोताओ, बहुत सारे श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने विचार कि किस तरह से उनके शिक्षकों ने उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। आप भी हमें बता सकते हैं, बहुत ही कम समय रह गया है। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
2: मैम, मैं राजीव बात कर रहा हूँ गुरुकुल पंचायत से
1: जी। क्या कहना चाहेंगे आज?
2: मैम, सबसे पहले तो टीचर डे की सब शिक्षकों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं
1: जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आज, कौन से हैं आपके फेवरेट टीचर और क्यों?

0: मैं कांगड़ा पेंटिंग करता हूँ और मेरे टीचर जो है वो श्री धनी राम जी है। तो मैम उन्होंने मुझे ये पेंटिंग सिखाई और मुझे काफ़ी इसमें इनाम मिला है। अभी मैम मुझे 15 जून को जो है राष्ट्रपति से सम्मानित होके आया हूँ मैं, और मेरे साथ में मेरे गुरुजी भी थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: तब तो आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इतना बड़ा सम्मान पाया है, तो हिमाचल का नाम भी आपने सुर्खियों में लाया, गौरवान्वित किया है हिमाचल को आपने।
0: जी, साथ में मैम मेरे गुरुजी भी साथ में थे, तो मुझे और भी अच्छा लगा कि चलो हमारे गुरुजी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो काफ़ी अच्छा लगा।
1: जी चलिए, अच्छी बात है, आप अपने गुरुजन को याद कर रहे हैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोताओं, अब बातचीत का समय बहुत ही कम है।

जी, बहुत सारे श्रोताओं ने हमें कॉल किया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए कि किस तरह से जो उनके शिक्षक हैं, उनके अध्यापक हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। और अब समय तो बहुत कम है, कॉलर्स हमें लगातार कॉल भी कर रहे हैं। बस चलते चलते ये कहेंगे कि तकनीकी सहयोग आप तक पहुंचाने में रहा सुनील शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाज़त, बस यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं लेकर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां।

सभी सुनने वालों को रीना का प्यार भरा नमस्कार। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम फिल्म खुदा गवाह के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर नटवरलाल से ये गीत। संगीत राजेश रोशन का है, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

अब एक सूचना सुनिए श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण कारण लक्षण और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न। स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शौर्य कालिया बाल रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर रहेगा 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फूल और कांटे से ये खूबसूरत सा गीत। आवाजें हैं कुमार सानू की। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं समीर।

उदित नारायण विनोद राठौड़ की मिलीजुली आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म त्रिमूर्ति से ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नरोत्तम कुमार के गाए इस लोक भजन के साथ।

कार्यक्रम संबंधी अब एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। इससे संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शौर्य कालिया, बाल रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर रहेगा 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूले। रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विक्रांत को।

नीमो चौधरी को अभी आप सुन रहे थे इस लोकगीत में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं अजय सिंह की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर प्रातः 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोकभवन में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित

0: करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में सरकारी स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 और तकनीकी शिक्षा विभाग के 5 शिक्षक शामिल हैं। इस बीच शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा संवाद भी आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जा रही है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दधोल और पपलाह में इस योजना के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने 14 ग्राम पंचायतों के लोगों से संवाद कर इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को 20 सितंबर से पहले पात्र परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं में अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जिस तरीके से नियुक्तियों में मनमाना रुख अपनाया है, वो सिर्फ उनकी कार्यप्रणाली पर ही नहीं बल्कि उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों में वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद व टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर मॉनसून सत्र के दौरान आम जनता से जुड़े विषयों को उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो भी विषय सदन में उठाए उनका सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। विनय कुमार ने आरोप लगाया कि मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ही विपक्ष ने शोर शराबा किया। दूसरी ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिल रही है, सरकार ने उसे सदन में उपलब्ध नहीं करवाया। लाहौल स्पीति जिले के करपट गांव में बाढ़ के कारण मुख्य पुल के टूट जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर फसल के मंडी में ना पहुंचने से किसान चिंतित है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि पुल के अभाव में लोगों को जान जोखिम में डालकर झूले का सहारा लेना पड़ रहा है।
1: मयाड़ घाटी के करपट गांव में किसानों की परेशानी अभी खत्म नहीं हो पाई है। गांव का मुख्य पुल अब भी पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में किसान झूले के सहारे अपनी गोभी की फसल को सड़कों तक पहुंचा रहे हैं। गोभी की फसल को करीब 2 किलोमीटर पैदल ढोना पड़ रहा है, जिसके लिए मजदूर एक पेटी गोभी ढोने के लिए 80 से 100 रुपए तक ले रहे हैं। वहीं व्यापारी भी किसानों को करीब 18 रुपए किलो का भाव दे रहे हैं। खेतों में गोभी ओवरसाइज होने लगी है। समय पर फसल के मंडी न पहुंचने से भी किसान चिंतित हैं। इसी फसल से ही उन्हें बच्चों की पढ़ाई और परिवार चलाने की उम्मीद थी, अब वही फसल चिंता का कारण बन गई है कि महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर झूला पार कर रही हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अतिरिक्त झूला लगाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को स्थायी राहत पुल और सड़क बहाल होने के बाद ही मिल सकेगी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यूजीसी नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा व सिरमौर जिले में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम होने की संभावना है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस बार मॉनसून सीजन में सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: लिख लिख चिट्ठियां कंधे जो पाया।
3: हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुन रहे हैं प्रेम सिंह को।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुरमा रहे हैं लहरू राम सांख्यान की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला।

जी हाँ श्रोताओं, देशभक्ति गीतों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म सरफरोश फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ। गायक कलाकार हैं रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम। इस गीत के लिए संगीत जतिन ललित ने दिया है और गीतकार हैं इसरार अंसारी।

देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म LOC कारगिल से ये देशभक्ति गीत, आवाजें हैं सोनू निगम की। गीत के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश से। गीतकार है आनंद बख्शी और गीत के लिए संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में सैनिक साथियों अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना। अब लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में हलनाइक फिल्म का गाना। अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सदमा फिल्म का गीत सैनिक साथी अब आपको सुनवा रहे हैं गुलजार के बोल, संगीत इलैयाराजा का, सुरेश वाडेकर की आवाज़, और ये गाना फिल्माया गया है कमल हसन और श्रीदेवी पर।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: दो बजकर 12:19 और 54 सेकेंड, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। बेटा फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के युगल सुरों में, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का।

0: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, हाजिर हैं हम नई बातों, जानकारियों और खूबसूरत से गीतों के साथ। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसी हैं आप सब सखियों, और क्या कुछ चल रहा है? जी हाँ, बारिश का मौसम है और बारिशें ही चल रही हैं, खूब बारिशें हो रही हैं और बरसात का ही अभी मौसम है। और हम सभी इन बारिशों से कहीं ना कहीं अब तंग हो चुके हैं, क्योंकि इस मौसम में ना तो ठीक से कोई काम होता है और ना ही कहीं हम आ जा सकते हैं। ऊपर से चारों तरफ पानी ही पानी, गलियों नालियों में कूड़ा करकट फंसा होता है, कई बार वो गलियों में आ जाता है ना, जिससे चलने में मुश्किल होती है, बदबू उसके साथ ज़्यादा फैलती है और हर तरफ घास ही घास, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े। सखी, इस मौसम में हमें हर तरफ से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, साफ सफाई से लेकर खान पान तक, रहन सहन से लेकर आने जाने तक। और हम अगर सावधानियां ना बरतें तो हमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं या हो जाते हैं, स्वास्थ्य से लेकर और भी कई परेशानियां हमें हो सकती हैं। इस मौसम में जहरीले जानवर और कीड़े सूखी जगह ढूंढते हैं और घरों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, साथ ही बाहर कोई सामान, जूते या कचरा अगर रखा है तो वे इसमें छिपने की कोशिश करते हैं और हमारा ध्यान नहीं होता है कई बार, और हम किसी भी सामान या जूते में या बाहर कोई भी सामान जो रखा होता है उसमें एकदम से हाथ डाल देते हैं, और क्या होता है कि कई बार वो कीड़े मकोड़े जो हैं हमें काट लेते हैं, दुर्घटना का हम शिकार हो जाते हैं। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं सखियों कि इस मौसम में बाहर कोई भी सामान ना रखें, जूते इत्यादि भी अंदर रखें, और यदि कोई कूड़ा करकट या टूटा हुआ सामान बाहर रखा हो तो उनमें हाथ ध्यानपूर्वक डालें, पहले अच्छे से देख परख लें, किसी लकड़ी या भारी चीज़ से हिलाकर देख लें, और जूते वगैरह भी तभी उठाएं या पहनें जब आप उन्हें देख परख लें। बच्चों को भी ये बातें ज़रूर बताएं और सिखाएं कि किसी भी चीज़ को एकदम से ना छुएं या ना उठाएं। इसके साथ ही घर के आसपास घास इत्यादि ना पनपने दें, जब भी अच्छा मौसम हो, धूप खिली हो, तब इसे साफ करते रहें। साफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सखियों, एक तो साफ सफाई बनी रहती है, साथ ही अच्छे से हम चल फिर सकते हैं, जो कि भारी बारिश या घास की वजह से नहीं हो पाता है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, और कई बार काई वगैरह भी काफ़ी इस मौसम में जम जाती है लगातार बारिश की वजह से, तो बीच बीच में उसे भी हटाते रहें, साफ सफाई करते रहें, क्योंकि इसकी वजह से भी इस मौसम में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। घर के आसपास गलियों नालियों में भी साफ सफाई का ध्यान रखें, घर का कूड़ा करकट इनमें ना डालें बल्कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें और अच्छे से निपटारा करें। तो ये थी बातें कुछ सावधानियों की जो हमें इस मौसम में बरतनी चाहिए, ताकि हम ठीक रहें, स्वस्थ रहें और आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े रहें, साथ साथ ही मीठे मीठे गीत सुनते रहें। तो कार्यक्रम में सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: खूबसूरत से गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम सुनो सखी में, और आज मैं हूँ आपके साथ रीना। और सखी, अब हम बात करेंगे हमारे आज के खास दिन की। जी हाँ, आज है 5 सितंबर और आज के दिन को हम मनाते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन की जन्म जयंती के रूप में, जो शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है। जब राधा कृष्णन के छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तब उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत में ये परंपरा वर्ष 1962 से लगातार चलती आ रही है। माता पिता सखियों हमें जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक उस जीवन को सही दिशा देते हैं। शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें सही और गलत का फर्क समझाते हैं। वे हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं और हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे एक शिक्षक थे। वे हमेशा से मानते थे कि शिक्षक समाज का वास्तविक निर्माता होता है और उनका जीवन शिक्षण को समर्पित था। ये दिन समाज में शिक्षकों के योगदान, उनके समर्पण और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उनके अथक प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा शिक्षक न केवल किताबों का ज्ञान देता है, बल्कि जीवन के मूल्य और सही रास्ता भी उन्हें दिखाता है। बहुत ही सुंदर पंक्ति आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर, शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा, प्यासे को जैसे मिलता पानी, शिक्षक है वही जिंदगानी। तो आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी धर्मशाला की ओर से शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम बात करेंगे एक और खास दिन के, जिसे आज हम मनाते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी दान दिवस। दान दिवस के रूप में ये दिन आज मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2012 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के पुण्यतिथि की स्मृति में चुना गया था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और परोपकारी संस्थाओं और सामाजिक कार्यों और दान के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। तो आप भी ज़रूर दान करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। और अब हम बात करेंगे आज के इस खूबसूरत अंक की। जी हाँ, जिसमें हम बात करते हैं माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्तों और मजबूत रिश्ते पर। जी सखियों, हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। दुनिया भर का ज्ञान हमें सबसे पहले हमारी माँ ही हमें सिखाती है। माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, खूब तरक्की वे करें और अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ें। माँ और बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल और सबसे प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को हमेशा एक अच्छे इंसान, एक अच्छी महिला बनाने की कोशिश करती है, ताकि वह दूसरे घर जाकर उसे अच्छे से संभाल सके, एक अच्छी माँ खुद बन सके। बेटी माँ से और माँ बेटी से भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। माँ की हर कदम पर अपनी बेटी को यही सीख होती है, ताकि आगे चलकर अच्छी जिंदगी वो बिताए। एक माँ ये अच्छे से जानती है कि बेटी का जीवन कितनी मुश्किलों से भरा होता है, आगे चलकर उसे किस तरह मजबूत बनना है, उसका जीवन दूसरों पर निर्भर रहना है। उसे वह हर बात चीज़ सिखाती है जिससे उसकी बेटी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, हर सिचुएशन में वह खुद को संभाल सके और अपनी ज़िंदगी मजबूती के साथ बिता सके। माँ के संस्कारों की झलक हमेशा अपने बच्चों में दिखाई देती है। वह किस तरह अपनी बेटी को समझती है, उसकी ज़िंदगी के लिए तैयार करती है, ये उसके व्यवहार से ही पता लगता है। बात बात पर भी तो सिर्फ माँ का ही नाम आता है कि माँ ने सिखाया है या नहीं सिखाया है। सखियों, एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है।

दिल उनकी चिंता में लगा रहता है। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ समझदारी और परिपक्वता से पूर्ण होता है। माँ अपनी बेटी के लिए या अपने बच्चों के लिए एक ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती है। माँ के दिए संस्कार बच्चों के कामों में झलकते हैं और वे हमेशा अपनी माँ के नाम से ही जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में होता है माँ बेटी का रिश्ता, जिसकी नींव बहुत मजबूत होती है। और माँ बेटी का ये रिश्ता खूबसूरत सा यूं ही बना रहे, तो माँ की चिट्ठी में आज इतना ही। और अब फिर से वक्त एक खूबसूरत से गीत संगीत का, तो चलिए साथ में सुनते हैं और मिलते हैं गीत के बाद।

0: जोकर।
1: अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। इससे संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शौर्य कालिया बाल रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 01892।

0: खुद को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: जैसे कि इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप सभी जानती हैं, रसोई घर से ये पड़ाव संबंधित रहता है और इसमें हम बातें करते हैं हमारी रेसिपीज की और हमारी रसोई घर से संबंधित। बात करें अगर पनीर की, तो पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, स्वस्थ वसा जैसे पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की मुरम्मत और शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है और कैल्शियम की बात करें तो ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। वसा शरीर को ऊर्जा देती है। विटामिन B12 खून और कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। फास्फोरस पाचन क्रिया और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है तथा मैग्नीशियम दिल की सेहत और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। पनीर हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसकी बहुत सी रेसिपी सखियां बनाकर खाती हैं। तो चलिए आज हम सुनो सखी की रसोई में बनाएंगे मसाला पनीर की रेसिपी। पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें और पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। उसी कढ़ाई में बचा हुआ तेल गरम करें और इसमें जीरा और खड़े मसाले डालें। बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें साथ में और सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक पकाएं। कटे हुए टमाटर और नमक डालें। अब जब आपको लगे कि टमाटर गलने लगे हैं, तब हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से भून लें। आँच को धीमा रखें और फेंटा हुआ दही डाल दें। लगातार चलाते रहना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। मसालों से तेल अलग होने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा गर्म पानी डालकर ग्रेवी को गाढ़ा या पतला कर लें। अब इसमें भुना हुआ पनीर और कस्तूरी मेथी क्रश करके डालें। ढककर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर तक चला जाए। अंत में गरम मसाला डालकर गैस बंद कर दें। गर्मा गर्म पनीर मसाला तैयार है और इसे आप रोटी, नान, परांठे या चावल के साथ गर्मा गर्म खाने का मजा लें। तो आप भी ज़रूर बनाएं पनीर की रेसिपी और मजा लें। और चलते चलते कार्यक्रम सुनो सखी का मजा इस खूबसूरत से गीत के साथ।

रंग फिल्म के इसी खूबसूरत से गीत के साथ सखियो हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 3 विभागों से कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश भर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत बनाए रखें। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये प्रकार

0: एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेलकूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award 2026 in New Delhi, the president said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
3: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
2: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The president also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
0: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और

0: बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते हैं। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
0: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randeep Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: पहचाने हैं और सदाबहार तो है ही, ऐसा हमारी एक श्रोता लिख रही हैं। गीतों का संसार बहुत बड़ा और अनोखा है। कभी कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सारा दिन हमारे साथ चलते हैं और रात को नींद की थपकियां देकर हमें सुला भी देते हैं। गीत क्या है, जब दुख हो तो हमें थाम लें और सुख में आनंद की बारिश कर दें। जीवन में बहुत सी बातें समझ के परे होती हैं, यह गीत भी ऐसे ही होते हैं। सुख दुख के साथ ही जीवन के लिए सबसे आवश्यक संजीवनी बूटी यह गीत ही तो है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बातें आपने हमसे साझा की है। गीत संगीत ना हो जीवन में तो कैसा जीवन। एक और श्रोता हमसे कह रहे हैं कि आज की इबारत की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें प्रेम कोई दावा नहीं, बल्कि एक धीमे धीमे भीतर उतरता हुआ एहसास है। यह प्रेम की उस दास्तां सी है जहां दो लोग शायद मिले कम हैं, मगर एक दूसरे में ठहर बहुत गए हैं। संवादों के बीच छुपी शरारत, इंतज़ार और अनकही चाहत धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते का रूप लेती है जिसका कोई नाम नहीं। यहाँ सच और झूठ भी मोहब्बत के सामने अपना अर्थ खो देते हैं, क्योंकि दिल जिसे सच मान ले उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। बस यह एहसास ही बचता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कहानी बनकर नहीं, एक खुशबू की तरह आते हैं, दिखाई नहीं देते, मगर उनके भीतर, उनके गुजर जाने के बाद भी देर तक हमारे भीतर महकते रहते हैं। जी हाँ, एक श्रोता हमें लिख रहे हैं कि आनंद ही आनंद रहे, वो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही हमें इस तरह से कमेंट

कर रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने साथ ही गीत और फिल्मों के नाम भी लिख भेजे हैं जो उन्हें लगता है कि आज की इबारत के अनुसार बजने वाले हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेम यदि सच में प्रेम है तो वह हथेली की रेखा नहीं जिसे मुट्ठी में कैद कर लिया जाए, वह तो अनंत आकाश है जहां पक्षी को उड़ने की स्वतंत्रता भी है और लौट आने के लिए एक अपना घोंसला भी।

क्या बात है, आप सभी ने जवाब भी लिख भेजे हैं। फिल्म का नाम है आप बीती और अभिनेता और अभिनेत्री जो अभी हमने आपको गीत सुनवाया था उसमें थे हेमा मालिनी और शशि कपूर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने हमें लिख भेजे हैं। और अब अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म में सखियों के साथ जो अभिनेत्री गुनगुना रही हैं वो कौन है, और साथ ही इसमें एक पक्षी भी दिखाई देता है इस गीत में, तो उसका भी नाम लिख भेजिए हमें।

0: उनका गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में अभी हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं उनके जवाब आपने लिख भेजे हैं। कुछ ही देर में हम आपके कमेंट्स लेते हैं, उससे पहले लेते हैं ये संदेश।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
7: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
6: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
7: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
6: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि धन्य हो, सब गीतों की पंक्तियां पहली लाइन में ही दी हैं और पूछती हैं कि कौन से गीत बजेंगे। चलो जो भी बजेंगे वो हम सुनेंगे, क्या बात है, जरूर सुनिए। और अच्छा ये बताइए कि जो गीत अभी हमने इन संदेशों से पहले बजाया था क्या वो आपने बूझ लिया था आसानी से। हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज गद्यांश में इश्क मोहब्बत की खास कहानी उकेरी हुई है। इश्क कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा जाए, नहीं यह कोई ऐसा फलसफा है जिसे चंद जुमलों में समेटा जा सके। यह तो दो रूहों के बीच बहने वाली वह मध्यम सी नदी है जो खामोशी से बहती है लेकिन पूरे वजूद को सराबोर कर देती है। प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि जिस्म फना हो सकते हैं लेकिन दो दिलों के बीच धड़का हुआ सच्चा एहसास कायनात के जर्रे जर्रे में हमेशा के लिए अमर रहता है। न आंखों से बयां हुई न लफ्जों में समा सकी यह इश्क, यह कहानी इश्क है बस धड़कनों से गाई जा सकी। क्या बात है, क्या फरमाया है आपने।

एक श्रोता कहते हैं कि सुमधुर सुरीले गीतों और श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल, हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें इबारत पढ़कर प्यार मोहब्बत की कहानी मधुर गीत गा रही है, दो दिलों के बीच की निशानी, खामोश एहसास की जुबानी, जवानी दीवानी की मस्तानी खुशबू आ रही है, इस तरह से उन्होंने कुछ गीत हमें सुझाए हैं।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज फिर इबारत में छिपे गीतों के मुखड़े और अंतरे से गीतों की गाड़ी आगे बढ़ेगी, जिसमें एक से बढ़कर एक गीतों की आमद दिखती है। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, दरिया में फेंक दू चाबी, इस तरह से उन्होंने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भिन्न भिन्न गानों के ताने बाने में बुनी गई इश्किया इबारत दिल फेंक आशिक माशुकाओं के दिलों को छेड़ती हुई रोमानी प्रेम गाथा से सराबोर है। हुस्नो इश्क के इस टकराव में तहजीबी अदाएं हैं, छेड़खानी है, इकरार है तकरार, इनकार फिर अंत में स्वीकार भी है। मजबूर है दिलों के जज्बातों को बखूबी गीतों का संकलन कर खूबसूरत रूप से सजाया गया है। दो दिलों के दरमियां बंद हुए अल्फाजों की चाबी ढूंढने के लिए संगीतमय दरिया में डूबने के लिए हम श्रोतागण भी सफर के इंतजार में बेताब हैं। क्या बात है। आप सुनते रहिए सुरीला सफर। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम जब शाश्वत अनुभूति के अस्तित्व को प्राप्त कर रहा होता है तो यहाँ से प्रेम कहानी स्मृति काव्य के रूप में परिणत होने लगती है और यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, जीवन समाप्त हो सकता है। लेकिन इस कहानी में जो शब्द गढ़े गए हैं वो किसी सीमा के बंधन से नहीं जुड़े होते, उनका विस्तार ब्रह्मांड में तरंगित हो जाता है। उससे प्रेम की रागिनी बांसुरी से निकलने वाली मधुर तान से जुड़कर कहानी को संगीतमय बना दिया करती है। इसी तरह से हमारे कई श्रोताओं ने हमें कई सारे गीत आज यहाँ लिखकर भेजे हैं। साथ ही एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम शायद वही है जब किसी की तलाश गलियों से निकलकर दिल की दहरी पर आ बैठे, फिर मुलाकात हो या ना हो, कहानी सच हो या आधी अधूरी, फर्क कहाँ पड़ता है। कुछ लोग मिलते नहीं, बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं, उनकी आवाज़ खामोशी में सुनाई देती है, उनकी याद अकेलेपन में साथ चलती है। मोहब्बत का हिसाब बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है, जिसे दिल में जगह दे दो उसे निकालने की कोई चाबी उम्र भर नहीं मिलती। बिल्कुल, एक बार जो दिल में बस जाए तो बस उसी का नाम हमारा दिल गुनगुनाता रहता है। इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत फिल्म ससुराल से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत है। शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आपको बताना है अभिनेत्री का नाम।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि अभी तक दिल ओ दिमाग तरबतर हैं आपने यादों की महफिल प्रोग्राम में सलिल चौधरी के जो गीत सुनवाए उसके खुमार में। आज की इबारत भी सुंदर गानों की तरफ इशारा कर रही है। प्रेम वो खुशबू है जो बिना चाहे भी फैल जाती है, बिना बताए सबको पता चल जाता है। किसी को दिल में बंद करके चाहे चाबी को दरिया में फेंक दो, पर बंद ताला तो सबको नज़र आ ही जाता है। बिना कहे कितनी कहानियां बन जाती हैं और वो अमर भी हो जाती हैं। इस गीत से पहले हमने जो गीत आपको सुनवाया था अपने हुए पराए फिल्म से, और हमने पूछा था कि इस गीत में कौन अभिनेत्री हैं जो गुनगुना रही हैं और साथ ही कौन सा पक्षी है। तो इसका जवाब आया है कि माला सिन्हा इस गीत में गुनगुना रही हैं सखियों के साथ, और साथ ही जो पक्षी है वो है मोर जो भी साथ में नाच रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने हमसे साझा किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल में भी कोई बसता था मगर ना खता उनसे हुई ना हमसे हुई, फिर भी यह दिल टूट गया। जिनकी वजह से हमने अपना पूरा करियर खत्म कर दिया और आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई गम भरा गीत हो तो सुनवा दीजिए। देखिए गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। श्रोता ने लिखा है कि आप बीती का मतलब, एक्चुअली हमने जो गीत सुनवाया था फिल्म का नाम था आप बीती, तो उन्होंने इसी शब्द को उठाकर हमें बताना चाहा है कि स्वयं पर बीती हुई कुछ बातें, और ऐसा तकरीबन सबके साथ हुआ होगा, कुछ अच्छी कुछ आलतू फालतू बातें ज़रूर हुई होगी। इसे कह रहे हैं वो आप बीती, बिल्कुल।

साथ ही एक श्रोता ने हमें जवाब लिख भेजा है, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था फिल्म ससुराल से, क्या मिल गया क्या खो गया। हमने पूछा था कि कौन अभिनेत्री है इस गीत में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ससुराल का ये गीत है और बी सरोजा देवी अभिनेत्री, साथ ही राजेंद्र कुमार अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुराना रेडियो खो गया है और नया फेसबुक पेज मिल गया है, क्या मिल गया और क्या खो गया, क्या बात है। और साथ ही एक श्रोता लिख रही है कि बहुत ही मस्त धुन बीच बीच में सुनवाई जा रही है, जी आप बस इस सफर का आनंद लेते जाइए। क्या बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब हमें लिख भेजे हैं हमारे प्रश्नों के। एक श्रोता ने लिखा है कि सच कह रहा हूं, मैंने तो अपनी धर्म पत्नी को दिल में उस दिन ही बंद कर दिया और चाबी दरिया में फेंक दी है, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था और पहली मुलाकात हुई थी, मेरी अंतिम सांसों तक मेरे दिल में बंद रहेगी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। अगर आपकी धर्मपत्नी ये बात सुन रही है तो आज उनसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा, है ना। हमारे एक श्रोता ने ये जो धुन हमने बजाई है उसके बारे में लिखा है कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, पेइंग गेस्ट फिल्म की ये धुन और माउथ ऑर्गन से ये सुन रहे हैं आप, और मिलन गुप्ता, उन्होंने ये हमें लिखकर भेजी है इसकी डिटेल्स। और एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने हुए पराए अभिनेत्री माला सिन्हा और सखियों के साथ में खूबसूरत बगीचे में काफ़ी हंसमुख तरीके से नृत्य कर रही हैं। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बहार बनके वो मुस्कुराए, सही में सदाबहार बेहतरीन सुंदर गीत बज रहे हैं, इसके लिए वो हमें धन्यवाद भी कह रहे हैं। और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, इसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और अब जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस फिल्म का नाम बता दीजिए।

बिल्कुल, देश से गांव में, गांव से गली में, और गली से घर में, और घर की बात सीधे दिल में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना जी, लता दीदी के गाए सदाबहार सुरीले गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको देते हैं धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यह गीत काफी समय बाद सुनने को मिल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की गीतों भरी इबारत में मनमोहक गीतों की बौछारें बरसने वाली है, हम सभी श्रोता भी इन गीतों में झूमेंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। क्या बात है। एक श्रोता लिख रही है कि कभी किसी को ढूंढते ढूंढते हम शहर, गांव और गलियों से गुजरते हैं और पता चलता है कि जिसे तलाश रहे थे वो तो चुपचाप हमारे दिल में आकर बस चुका है। फिर कहानी सच्ची हो या आधी अधूरी, दिल को उसका साथ मिल जाए तो हर बात खूबसूरत लगने लगती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आदि श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि पर यादों की महफिल प्रोग्राम उन्हीं पर केंद्रित था, वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को यथायोग्य सादर सप्रेम और इस तरह का अभिनंदन वो कर रहे हैं। साथ ही वो सारे कार्यक्रमों से उन्होंने पिरोकर हमें ये संदेश लिख भेजा है, सुरीला सफर तक वो अब भी हमारे साथ बने हुए हैं विविध भारती पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, आरजू तो हमारी भी है ये, मगर डर है कि मौसम कहीं ये बदल न जाए। जी हाँ, हमें इस डर से उभरते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा, तभी प्रणय के पथ का सृजन होगा और भय बिनु होए न प्रीति के रीति का मिलन होगा। इस कहानी के सच को समझने के लिए ही हो रहा है जो उसे समझने और उसी में रहने के धैर्य और संयम के साथ ही साथ उपजे साहस के साथ सत्य की दिशा के पहचान की आवश्यकता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। और साथ ही वो लिख रहे हैं कि आज अपने सुरीला सफर कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले गद्य पद्यमयी इबारत में विभिन्न फिल्मों के प्रणय पर गीतों की पंक्तियां अंतरे मुखड़े के रूप में रखी गई हैं और उनमें प्रणय के प्रमुख भाव समाये हुए हैं। परदेसी आया गांव में, गली में, घर में, हाँ घर से दिल में। जी हाँ, वे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में कोई ऐसा परदेसी इस तरह आकर समाया हुआ है। बहु तेरे तो उस पर भी शक ही नहीं, अपितु सच में ऐसा हो सकता है, ऐसे ऊहापोह भरे माहौल में ही जीवन गुजार देते हैं और अपने

और हमने आपसे पूछा था कि ये जो गीत हमने आपको सुनवाया, इस फिल्म का नाम क्या था। आप सभी के जवाब हमें मिल गए हैं, फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दूर की आवाज़। मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत है। शकील बदायूनी ने इस गीत को रचा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने। फिल्म का नाम हमने आपको बता दिया है, अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आप हमें बताएं।

हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि आज की सुंदर सी इबारत बहुत से लोकप्रिय गानों से बनाई गई है। आईना चेहरा तो दिखाता है मगर मोहब्बत इंसान को उसकी असली कहानी दिखाती है। जब कोई दिल में उतर जाता है तब उसे भुलाने की कोई चाबी नहीं होती। कहानी चाहे खत्म हो जाए पर एहसास अपनी जगह बना रहता है। तो उन्होंने कई गीत भी हमें यहाँ पर सुझाए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के काम की व्यस्तता की वजह से जवाब लिखने का समय नहीं मिल पाता। हमेशा की तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए और साथ ही सुनते रहिए विविध भारती के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा

जा रहे हैं। फकीरा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लता मंगेशकर की आवाज और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत रविंद्र जैन, गीतकार और संगीतकार।

हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की इबारत के सभी गाने बहुत अच्छे हैं और उनका पसंद का गीत भी उन्होंने साथ में लिख भेजा है। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हमारे एक श्रोता हैं जो फिलिपिन मनीला से हमें मैसेज कर रहे हैं। जय हिंद, उन्होंने ये मैसेज किया है और वो सुरीला सफ़र सुन रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के संदेश भी हमें भेजे हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि देश से गांव में, गांव से गली में, गली से घर में और फिर दिल में विविध भारती आ गया है। क्या बात है। लीजिए अब सुनिए गैम्बलर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और इसी गीत के साथ सुरीला सफर अब समाप्त होने की ओर है। आसपास फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। और इसी गीत के साथ दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। आप सभी के संदेशों के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन की उस सुंदर पाठशाला का नाम है जहाँ किताबों के अक्षरों के साथ साथ जीवन के अर्थ भी समझाए जाते हैं। माँ की ममता और पिता के अनुशासन के बाद शिक्षक का मार्गदर्शन हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। वे हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें सफलता के आकाश तक उड़ने के लिए पंख देते हैं। कभी उनकी डांट अनुशासन की छड़ी बनकर हमें सही राह पर ले जाती है, तो कभी उनकी प्रशंसा प्रोत्साहन की वर्षा बनकर हमारे प्रतिभा को सींचती है। शिक्षक उस माली के समान हैं जो विद्यार्थियों के रूप में नन्हे पौधों की देखभाल करते हैं। कोई पौधा वटवृक्ष बनता है, कोई गुलाब की तरह महकता है और कोई ज्ञान की छाया बनकर दूसरों को सहारा देता है, लेकिन हर पौधे की जड़ों में शिक्षक के परिश्रम की मिट्टी अवश्य होती है।

कक्षा की चार दीवारों के भीतर बोला गया शिक्षक का एक वाक्य कई बार विद्यार्थी के पूरे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। उनकी आवाज में केवल शब्द नहीं होते, उनमें अनुभव की गहराई, स्नेह की उष्मा और भविष्य के सपनों की आहट होती है। आज तकनीक ने ज्ञान के अनगिनत द्वार खोल दिए हैं। एक क्लिक पर संसार की जानकारी हमारे सामने आ जाती है, लेकिन ज्ञान को विवेक में और जानकारी को जीवन मूल्य में बदलने का काम शिक्षक ही करते हैं। वे हमें केवल ये नहीं सिखाते कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करना है, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि जीवन की कठिन परीक्षाओं में धैर्य, ईमानदारी और साहस के साथ कैसे खड़े रहना है। शिक्षक दिवस इसलिए केवल शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ उस दीप को प्रज्वलित करने का दिन है जिसकी लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। ये दिन हमें उन गुरुओं को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने हमारी गलतियों को सुधार कर हमें बेहतर बनाया, हमारी असफलताओं में हमारा हाथ थामा और हमारी छोटी सी सफलता में भी सबसे बड़ी खुशी महसूस की।

शिक्षक ज्ञान की वो नदी है जिससे जीवन की प्यास बुझती है। शिक्षक वो आकाश है जहाँ सपनों को उड़ान मिलती है। शिक्षक वो प्रकाश है जिससे अज्ञान का अंधकार मिटता है। इसलिए शिक्षक के प्रति सच्चा सम्मान केवल उनके चरणों में सिर झुकाने से नहीं, बल्कि उनके दिए संस्कारों को अपने जीवन में उतारने में है। जब कोई विद्यार्थी ईमानदारी से आगे बढ़ता है, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, तब उसके शिक्षक की शिक्षा वास्तव में सार्थक होती है। शिक्षक हमारे जीवन के वे शिल्पकार हैं जो पत्थर में छिपी मूर्ति को पहचान लेते हैं। वे हमें तराशते हैं, संवारते हैं और ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जिस पर परिवार, समाज और राष्ट्र गर्व कर सके। शिक्षक दिवस पर हर शिक्षक को शत शत नमन, क्योंकि उन्होंने हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाया बल्कि जीवन की किताब को समझ कर पढ़ना सिखाया। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
5: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
4: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
5: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे

0: अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
6: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
7: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय

0: के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे।

आवाज़ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, सलिल चौधरी का संगीत था। आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, योगेश के बोल, सलिल चौधरी की बनाई थी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
6: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
5: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
6: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सरिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटखट रंगीले सांवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजर

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना, हम मीठे बहना, और तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना,

0: गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: हाफ टिकट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था सलिल चौधरी का।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
4: जी।
3: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
4: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में अगला गीत, शैलेंद्र के बोल, संगीतकार सलिल चौधरी, फिल्म का नाम 2 बीघा जमीन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, लाल बत्ती फिल्म से। मन्ना डे की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

बैठे हैं देखो यहाँ सेठ बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। बैठे हैं देखो यहाँ सेठ बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। लेके समाज का ये

इसमें सवार कोई प्यार का भिखारी, ख्वाबों की दुल्हन साथ बिचारी, ओ बाबू प्यार के फरियादी, कर ले शादी है आज।

0: चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। कहे जुगल गाओ प्यारो गम के मारो बेसहारो छुक छैया, खूब तेरी गाड़ी बारे घुसैया, खूब तेरी गाड़ी बाबा रे घुसैया, चुक चुक चुक छैया छैया।
1: लाल बत्ती फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज़ में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षक शामिल रहे। द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि समाज में अध्यापकों की अहम भूमिका है और विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में वास्तविक बदलाव लाने के लिए शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर उनके जीवन का हिस्सा बनना होगा।
2: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे। एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों

0: के माध्यम से 6,81,000 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है और सरकारी सेवाओं को सरल व सुगम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इन राजस्व मामलों में 5,44,000 इंतकाल, 47,000 से अधिक तकसीम और लगभग 63,000 निशानदेही के मामले शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व अभिलेख में 26,000 से अधिक दुरुस्ती कार्य भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस मुहिम से राजस्व मामलों की लंबित संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से तकसीम और राजस्व दस्तावेजों में सुधार से संबंधित मामलों के समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 3 दिनों तक विशेष राजस्व लोक अदालतें लगाई जा रही हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश भर की पंचायतों को कूड़ा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जा रही है। सोलन जिले के लिए 40 ई रिक्शा प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन में सोलन विधानसभा क्षेत्र की 7 पंचायतों के लिए ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में ये ई रिक्शा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कूड़ा निष्पादन हो सकेगा। शांडिल ने कहा कि पंचायतों को स्वच्छ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शोभा यात्रा की अगुवाई कर इसका शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने विजेता टीम को सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है हमीरपुर जिला की चिट्ठी। लेखक हैं हरीश नंदा और वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का है।
0: युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत जिला हमीरपुर द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए अभियान का शुभारंभ किया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अभियान के शुभारंभ अवसर पर देश भर के लगभग 10,000 स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। इनमें माई भारत व 6 स्वयंसेवक युवा क्लबों के सदस्य, विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। प्रधानमंत्री के संबोधन के उपरांत सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प की शपथ ग्रहण की और नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जिम्मेदार व जागरूक नागरिक बनने का संकल्प लिया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त द्वारा जिला में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों, इन दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों, जागरूकता कार्यक्रमों और सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए PM राहत योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का प्रावधान है। जिला हमीरपुर में भी ये योजना आरंभ कर दी गई है और अभी हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल 14 लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई है। पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसन, मैलिग्नेंट कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और गुर्दे के गंभीर रोगों के कारण बिस्तर पर असहाय पड़े मरीजों व अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त असहाय लोगों के लिए आरंभ की गई मुख्यमंत्री सहारा योजना को अब स्वास्थ्य विभाग के बजाय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारी चमनलाल शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला में मुख्यमंत्री सहारा योजना के पात्र व आधार सत्यापित लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की पेंशन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हमीरपुर जिला के परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए 35 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सरकार ई वाहनों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में परिवहन निगम के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। मुख्यमंत्री द्वारा कृषि उपनिदेशक कार्यालय परिसर में 8 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक

0: एसआरटी लैब हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपए की सीबीटी लैब और डिग्री कॉलेज में 70 टैब्स वाली लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। उन्होंने डिग्री कॉलेज में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्राओं के आवास का भी शिलान्यास व जिला पुस्तकालय में किताबी कॉर्नर का उद्घाटन भी किया। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला के सभी उपमंडलों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमीरपुर उपमंडल स्तर का समारोह टाउन हॉल हमीरपुर के परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण से पहले सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया। वहीं जिला हमीरपुर के बड़सर में आयोजित 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4,967 पात्र लाभार्थियों को 20,61,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए 77 वर्षीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कंवर को भी सम्मानित किया। डॉक्टर कंवर ने अपनी 80 करोड़ से अधिक की मूल्य की पूरी चल व अचल संपत्ति डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल हमीरपुर को दान कर दी है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर कंवर के इस सराहनीय व अनुकरणीय कदम की प्रशंसा करते हुए इसे सामाजिक प्रतिबद्धता और मानव सेवा की प्रेरणादायक मिसाल बताया। महिला व बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गठित खंड स्तरीय निगरानी व समीक्षा समिति की बैठक जिला हमीरपुर में एसडीएम विकास शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर एसडीएम ने बताया कि सुजानपुर खंड में अभी 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के 1002 शिशुओं, 350 गर्भवती व धात्री महिलाओं और 3 से 6 वर्ष तक के 223 बच्चों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ हमीरपुर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप हमीरपुर जिला की चिट्ठी सुन रहे थे। लेखक थे हरीश नंदा और वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरी अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशी। साथ ही फरमाइश करता है, उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर। साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश, मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा, सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथी घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने लिया है। और महेंद्र कपूर की आवाज़ में नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन का, साथ ही श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई, गीताबा, धर्मराज, करणराज सिसोदिया परिवार, और किशोर गुप्ता दस्तूर नगर छतरी तालाब रोड अमरावती से, और साथ ही रविकांत गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता और आशीष साथी सुप्रिया ने हमें फरमाइश भेजी है मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश की है हमारे श्रोता जिन्होंने भाटापाड़ा से हमें ये पत्र लिखा है, हरमिंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, त्रिशमन कौर चावला और गुरु फतेह सिंह, साथ ही लक्ष्मण बागवानी, श्रीमती विमला बागवानी, श्रीमती दिशा बागवानी, ये श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साथ ही मास्टर हर्ष व खुशी वाधवानी और शंकर नगर दुर्ग से मनिक सिंह बैस, कावेरी वनिता, लल्ली लेखमणि बैस और साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचित और कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करड़ा सिरोड रिसोर्ट से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख ये गीत सुनना चाह रहे हैं संबंध फिल्म का, आशा भोसले की आवाज़ में।

पत्र लिखा है प्रकाश दादा जैन, सूरज संगीता जैन और पीआर जैन ने। साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण, आशा नारंग और सुरेश नारंग ने। और ग्राम सालिया खेड़ी आमर मालवा, आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने। मैसवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नीना जी, स्वप्निल और अजय, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने। ये गीत सुनना चाहते हैं प्यार किए जा फिल्म का, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में सहयोग चंचल वर्मा और आकांक्षा विश्वकर्मा का था, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे, आंख की किरकिरी। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उच्चांकित रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी।
2: हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
3: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
4: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की माँ अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई।

0: उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
1: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे।
0: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ।
1: लेकिन आज इस मौसम में?
0: नहीं नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
1: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथा स्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूँ। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
0: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
1: हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को माँ के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
0: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
1: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
2: अरे महेंदा, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
1: हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
0: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
1: नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
0: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
1: अच्छा,
0: कुछ आराम मिल रहा है?
2: हाँ। अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टहल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा।
0: हम मूर्ख स्त्रियां ऐसे क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा।
2: ठीक तो है। अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
2: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सरदर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने ना देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो, मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा। अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं। कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई?
2: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
1: अर्थात
2: मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
1: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
2: वो तो अपना गुण न होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी भाई, अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो।

0: बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक देवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है। अरे कुछ दे दे।
1: हम जाते हैं।
2: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल ली जाती हैं, किंतु महेंद्रा के साथ नकद कारोबार होता है।
3: बिहारी, ये तू क्या पक रहा है?
2: ठीक है, मैं चलता हूँ।
0: अरे रे रे रे, आप निराश हो करने चाहिए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ।
2: महेंद्रा, तुम अपना सर्वनाश करना चाहते हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
3: पहेली मत पूछाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
2: साफ ही कहूंगा। महेंद्रा, विनोदनी तुम्हें जान बूझ कर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
3: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
2: ठीक है, मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तू हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है री, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न बोलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया। इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
2: चुन्नी चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो। चुन्नी
3: नहीं ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
2: चुन्नी मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
3: सुनो हमारी एक प्रार्थना है।
2: कहो।
3: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
2: और तुम भी?
3: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? पर चाहे जिस कारण भी हो, चलने के लिए क्या चलाने के लिए मुझे मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ जाएंगे वो? उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं।

0: उन्हें गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्या उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिख दो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तू दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया है?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी, तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
3: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
0: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो,
1: इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज सब चिंताओं के बीच मुझे बेधती रहती है। नाथ,

0: तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बह कर आई हूं, बह कर चली जाती।
1: ये चिट्ठी, समझा, आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए और अब से मैं विनोदनी से दूर ही रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
0: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
2: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
0: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी? लोग क्या कहेंगे?
2: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो। किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
3: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
1: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
3: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, वो, हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
1: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ!
4: क्या है बेटे?
1: माँ, बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
4: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
5: महेंदा, महेंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते?
1: मैं नहीं जा सकूंगा।
5: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा?
1: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
5: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
0: लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
5: ना ना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप

0: करना नहीं चाहता, इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चलती हूँ।
1: लाला जी, मैं देवी नहीं हूँ, मैं देवी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
2: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया। पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा, लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर

0: है तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा, मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा। व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है, मैं जा रहा हूं।
1: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है?
2: समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख ना मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।

0: बेटी, देख रही हूँ कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा, तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहाँ है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेलखाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: जब बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो?
1: छी, छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
3: अरे आशा, तू बेटी, महन तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
4: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
3: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: उनकी बात मुझसे न पूछो।
3: अरे बता तू, क्या बात है?
4: वो मैं न बता सकूंगी।
3: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान,

0: सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी, चुन्नी बेटी, लालटेन लेकर नीचे जा और दरवाजा खोल दे।
1: अच्छा मासी, खोलती हूँ।
2: हाँ। भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी।
1: मौसी, मौसी, मौसी, मौसी, मौसी, मौसी, मौसी,
3: मौसी। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और हमारी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था।
0: क्या?
2: बस कुछ न कहो, चलता हूँ। प्रणाम।
1: सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आज शाम यहाँ चले आए थे। तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ। थाउची के लौटने का भी कुछ नहीं। तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ।
4: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।
5: बॉम्बे टॉकीज,
6: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
7: दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे दीपाली इंडियन आइडल और अपने बचपन की बातें साझा कर रही थी और समय सीमा के तहत इस बातचीत को विराम देना पड़ा। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
8: ये जो भंवर वाला दौर था, झंझावात वाला दौर था, इससे निकलकर किसी फैसले पर दीपाली कैसे पहुंची?
9: हुआ ये कि जब हम वापस लैंड किए पटना एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी भीड़ आ गई थी एयरपोर्ट पे, मीडिया वाले सारे, पत्रकार और माइक्स और कैमरास। मेरे माता पिता पहली बार ऐसा देख रहे थे कुछ, क्योंकि अभी जो बेटी कुछ महीने पहले बम्बई गई थी वो लौटी है, तो वो मेरी बेटी नहीं है, पूरे बिहार की बेटी के नाम से ये अब सिर्फ मेरी धरोहर नहीं है
8: जी।
9: और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे पापा से सब पूछने लगे, अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जीवन में यही सत्य है, जो आपने पा लिया हो गया, उसको एंजॉय करने का हक इंसानों के अंदर वो संस्कार ही नहीं डाला गया है कि जो है
8: अब आगे क्या,
9: आगे क्या।
8: खुद को भी अभी तक ये पूरा स्वीकार नहीं हो रहा है मन को।
9: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता। इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना पूरी तरह से, जो स्थिति है चाहे खुशी हो चाहे गम हो उसको पूरी तरह से जीने दो। अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या क्या मतलब, क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी, दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफ़ी प्रेशर आया उनको ये पहले देख के, वो बिल्कुल हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
9: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी, इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल माला, और बच्चियाँ ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे। ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी पटना में। मेरे साइज का बुके आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे, अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना

0: और देख के अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
1: अच्छा,
0: बाबूजी ही हम लोगों को मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना, बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहाँ पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
1: उन्होंने एकदम बोल दिया,
0: पब्लिकली अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
1: हाँ।
0: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया? अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से। हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका। अब हार गई तो चलिए, इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था, हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया, अब पढ़ाई करो। लेकिन अब हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसको, मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहाँ पे हम रह सके। क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं, तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना ज़रूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे 2 और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। बैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
1: और वो अच्छी रकम थी,
0: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
1: आंखें एकदम,
0: खेल तो वहां से पलट गया सर।
1: हाँ।
0: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
1: बिल्कुल
0: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था, उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था, ये स्थिति थी। जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हर, हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप नहीं
1: थोड़े
0: चाहते।
1: में खुश रहना
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी, हाँ ये बात तो सही है, पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
0: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
1: हाँ हाँ।
0: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
1: हाँ।
0: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
1: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी।
0: करेक्ट।
1: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा। पहले वो गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
0: बिल्कुल। हाँ।

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना, गंगा मैया तो है पीरे चढ़े वो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो हैं, हाँ, जो सारे गामा
0: जो उसके प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ,
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी जितना बड़ा उनका ऑफिस था, हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम

0: बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर, हाँ जी जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं, भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे, तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा, क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज़ है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
1: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
0: नहीं,
1: है?
0: नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद। पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको, लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते,
1: बिल्कुल
0: नहीं बोल पाते।
1: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
0: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे, क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे, चस्का तो वहां से भी लग चुका था, और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
1: एक रूप है,
0: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन कुछ ही हमको लगता है कुछ ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट।
1: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा, उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
0: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ ही दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ, उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
1: ये अलग चैलेंज हो गया,
0: ये अलग चैलेंज हो गया। सो मेरे लिए बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीज़ें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पर। तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
0: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू, क्योंकि अब

0: हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है. तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया. जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इम्पोर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले.
1: और ये जो गायकी वाला मामला था
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया.
1: गला तब तक संभल गया था.
0: संभल गया था पर रियाजी गला नहीं था वो. वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था. वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए. तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं. कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है. तो शोज अच्छे कट, अच्छी मतलब मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था. और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं. ऐसा जीवन चल रहा था मेरा.
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना. पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे. माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच. क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो, क्लास जा रहे आ रहे. पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी. मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ. हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, आने वाली थी या आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना. और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई. तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा. और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी. और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए. तो मेरी माँ को ये बात खटक गई. क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया.
0: ये बाद में बोला गया जब उसने हमें मिलवा दिया. और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया या था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे. तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, फेवर्स कोई फ्री में
1: करण बनते हैं.
0: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके. और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही पड़ेगा.
0: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे. तो अब हम लोग पटना से उठ के यहाँ आए हुए, हमारा तो हमारी तो दुनिया हिल गई. और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं. तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है. पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का वो ज्यादा देखते हैं. तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना. और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना. क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए. और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने,
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो. वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक.
1: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में.
0: एक्टिंग की दुनिया में एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही कर

0: ना होता है जो डायरेक्टर बोलता है. तो बनना तो हमको डायरेक्टर है. आई एम अ लीडर. ये
1: यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही.
0: बिल्कुल.
1: और यहाँ से FTI दिखने लगा.
0: बिल्कुल.
1: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन.
0: हाँ टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था. लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई मेरे माँ बाप मेरी बहन कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो. कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता.
1: तो आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना है.
0: हाँ और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में.
1: हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना.
0: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में.
1: तो ये क्लासेस
0: जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर. तो उन्होंने इतनी छूट दे दी कि तुम
1: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी
0: तो चलेगा. तो वो वहाँ पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया. क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है.
1: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है और उसमें आपने इस पर फोकस किया. ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
0: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है. मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर.
1: ये सारे संस्कारों का खेल,
0: सारे संस्कारों का खेल है. ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे. और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ. मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर.
1: एक गजब. तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दिया.
0: बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना.
1: ये तो बहुत बड़ा टर्न था.
0: हाँ ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था.
1: FTII की तैयारी किस तरह की?
0: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है. फिल्म देखना, हमें मसाला फिल्में देखने आती थी. मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी. मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वॉज अ सीरियस बिजनेस. और वहाँ पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है. तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है. जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है. ये छोटा जो क्या बोलते हैं, बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है. तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत हैं. इतना नहीं रो सकती है कोई. वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है. तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी. मे बी यू नो ये मेरे दिमाग में, ये
1: टू कंट्रोल द थिंग्स एंड टेल योर स्टोरी,
0: करेक्ट, टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज. क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है. इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा. तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था. तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है. और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको. तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा. तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने. तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है. इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा. ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट. तो
1: उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी.
0: बिल्कुल.
1: ये कहानी बहुत गजब की है भाई.
0: हाँ.
1: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं. पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं.
0: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं. आप सोचिए हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं. इनको कुछ नहीं पता है
1: नहीं, ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए.

0: से, हाँ
1: लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTI में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी, हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीज़ें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहाँ हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को, मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख
0: लें या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और वो शान बगा लें,
1: कुछ भी नहीं आता था। मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी, एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती, एक लड़की सोच रही थी वो FTI में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
0: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
1: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है छोटे

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़
1: सब सब सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब दीपाली
1: जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेसिस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 जो 12 सीट होते हैं, जिनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी, तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है। मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए। हाँ। और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर
1: अलग अलग? अच्छा, ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का। क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, भी ऐसे ही स्टूडियोज है। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे। तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नज़रिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है। और उसके बाद आप पहुँचते हैं एक ऐसी जगह जहाँ वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ

0: माँ सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ, ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है
1: देयर इज
0: जीवन,
1: नो बाउंड्री इन ह्यूमन
0: देयर इज
1: इमोशंस।
0: नो बाउंड्री, और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं,
1: बहुत सही,
0: नॉट जस्ट लिटरली फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया, ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है जो फिजिकली और नॉन फिजिकली मेंटली ऑल्सो हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये FTII ने सिखाया हमको।
1: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख
0: यहाँ
1: सकते
0: कुछ
1: थे,
0: भी देख
1: डिस्कस कर
0: सकते
1: सकते
0: थे,
1: थे।
0: बिल्कुल। हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे, मतलब कोई इंजीनियर है इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा,
1: बिल्कुल
0: जब
1: बिल्कुल
0: उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे,
1: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग
0: ये
1: थे।
0: सब सिनेमा लवर्स, और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था, ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और
1: वाह,
0: ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों का सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो मेरा 1 साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर, 1 साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है,
1: वाह वाह वाह,
0: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है, सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन FTII, तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन।
0: पूरा पूरा, मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है, FTII उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत, दीपाली को अडल्ट बनाया FTII ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस, वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली,
1: अच्छा,
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और FTII के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए, और वो एक इतना कथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना।
0: इतना हल्का महसूस हुआ, तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है, मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और वहाँ पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई दीपाली
0: बिल्कुल
1: की, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने,
1: यहाँ एक गाना सुन लें,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?
0: लिए

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की भूल है।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है, FTI से निकल के सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा एक, भी सुनने मिलता था।
0: एक एनोनिमिटी मिली,
1: एक अनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि

0: अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं। अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है। और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर। आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
1: बहुत सही
0: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि टारगेट ध्येय है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए।
1: हाँ।
0: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो पैशनेट लोग ही कर सकते।
1: टीम की तरह
0: अब
1: काम
0: अब,
1: करना
0: अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए। अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने जीवन के, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स और FTI का तो हम मशहूर हैं, बैचमेट्स और
1: अलुमनाई
0: हमारा काफी तगड़ा है
1: वहाँ, एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता
0: बहुत
1: है,
0: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
1: पृथ्वी हाउस में होता है,
0: पृथ्वी हाउस में, पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम, हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी साहब रहते थे। तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहाँ पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे। नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं FTI से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप, वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना, गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहाँ मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल
0: में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का।
0: और वो उनको मेरी आवाज़ इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ये गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजे

0: देखो है, कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे। 5 बजे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति।

0: दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: आम सभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। श्री मोदी ने बच्चों में अत्याधुनिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है। तो प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तमिलनाडु के डिंडीगुल से आ रहे इन 8 विद्यार्थियों को ले जा रही एक कार सड़क निर्माण और यातायात डायवर्जन के काम के दौरान एक खड्डे ट्रैक से टकरा गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि घटना से पहले घटनास्थल पर व्यापक सुरक्षा उपाय और चेतावनी संकेत लगाए गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमी

0: End this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:10 हुए हैं। अब वक्त है संध्याकालीन भजनों का। आज हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में फिल्मों से कुछ भजन।

सर पर मोर मुकुट, अंधेरे अधरों पे मुरली, चेहरे पे वो प्यारी सी नटखट मुस्कान और गोपियों की मटकी चुरा कर ले जाते मनमोहन का वो दृश्य हमें सुकून से भर देता है। यही तो है हमारे नंदलाल श्री कृष्ण की महिमा।

फिल्मों से भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, जिसके नाम में प्रेम है, जिसकी मुरली में संगीत है, जिसकी लीलाओं में जीवन का संदेश है और जिसकी मुस्कान में पूरा वृंदावन बसता है, वो है हमारे कान्हा। आइए श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हैं इस अगले मधुर भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से कुछ भजन। आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। 5:25 हुए हैं। आप प्रस्तुत हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

प्रोग्राम युवामंच में सभी युवा दोस्तों का सभी श्रोताओं का स्वागत। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में कुछ लोग हमें रास्ता बताते हैं और कुछ लोग हमें रास्ता खुद ढूंढना सिखाते हैं। एक शिक्षक भी तो यही कहता है, कभी सवाल पूछकर, कभी डांटकर, कभी हौसला देकर और कभी सिर्फ इतना कहकर, एक बार फिर कोशिश करो, जरूर होगा। तो आज शिक्षक दिवस पर युवा मंच प्रोग्राम में सेगमेंट हेलो जीनियस की शुरुआत उन तमाम शिक्षकों को सलाम के साथ जिन्होंने अपने अंदर सिर्फ ज्ञान नहीं हमारे अंदर उत्पन्न किया, साथ ही साथ हमारे अंदर सोचने की आदत भी पैदा की, जिन्होंने हमारे सवालों को दबाया नहीं बल्कि हमें और सवाल पूछना सिखाया। और आज हम भी प्रोग्राम में वही करने वाले हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम हेलो जीनियस में हम पूछेंगे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग से और कुछ मजेदार से सवाल। तो यूं ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवा मंच। हेलो जीनियस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे अपने युवा दोस्तों के साथ। तो युवा दोस्तों को हमसे जुड़ना है और कार्यक्रम में हमारे साथ बात करनी है हमारे टेलीफोन नंबर के माध्यम से 01892-224391 01892-224391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है और इस नंबर पर हमारे युवा दोस्त कॉल करेंगे और हमसे जुड़ेंगे और जो आज के मज़ेदार से इंटरेस्टिंग से सवाल हम लेकर आए हैं उन सवालों के जवाब हमारे युवा दोस्त हमें देंगे। और जवाब ना भी आए तब भी निराश होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हंसी मजाक हो जाएगी, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी और मन खुश हो जाएगा। दोस्तों जीनियस होना कोई बड़ी बात नहीं है और अगर किताबें पढ़ने से सभी जीनियस हो जाएं ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी जीनियस इंसान तब भी होता है जब वो सवाल पूछने की आदत अपने भीतर पैदा करता है। सवाल ध्यान से उसका जवाब सुनने की अगर उसमें पेशेंस है तो वो भी जीनियस है, क्योंकि कई बार सवाल मुश्किल नहीं होते लेकिन हम उसे मुश्किल बना देते हैं। और इस समय अगर आप घर पर हैं, घर से बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले दीजिए और हमसे जुड़ जाइए और कागज़ कलम ले लीजिए। कागज़ कलम नहीं लेनी है तो अपना दिमाग तैयार रखिए पहले सवाल के लिए।

0: हेलो हेलो जी, नमस्ते जी। नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम सारिका है, मैं
0: जी सारिका, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: कांगड़ा से बात कर रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं सारिका?
1: मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: जी, और हमारा है आज प्रोग्राम युवा मंच में हेलो जीनियस सेगमेंट है, तो आप पहले सवाल के लिए तैयार हैं?
1: हाँ जी।
0: जी चलिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक ऐसी चीज़ का नाम आपको बताना है जिससे हम जितना निकालते हैं वो उतनी ही बड़ी होती चली जाती है।
1: दोबारा से बोलना चाहे क्वेश्चन।
0: एक ऐसी चीज़ का नाम आपको बताना है जिससे हम जितना निकालते हैं वो चीज़ उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। सोचिए, दिमाग लगाइए। जी सारिका, जवाब आपको नहीं पता, कोई बात नहीं।
1: क्या इसका जवाब बाल है?
0: जी नहीं, आपको मैं जवाब बताती हूँ। इसका जवाब है खड्डा। खड्डा जब हम खोदते हैं उससे जितनी ज्यादा मिट्टी निकालते जाते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है। सारिका बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मुझे पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: जी, पढ़ाई में आप ज़्यादा लिप्त रहती हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़कर, आगे जाकर हम कुछ बन पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। कार्यक्रम में आज आपने कॉल किया और बेशक जवाब आप नहीं दे पाई, लेकिन आपने कोशिश की, और कोशिश करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। यूं ही बने रहिए हमारे साथ।
1: ठीक है।
0: ओके जी, आप ही हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391, ये स्टूडियोज़ का नंबर है, और इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और हम संग जुड़ जाइए। युवा मंच प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे साथ, और हेलो जीनियस सेगमेंट में हम बातें कर रहे हैं। कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, कुछ मज़ेदार से सवाल हैं, कुछ ट्रिकी हैं, और छोटा मोटा जीके भी आपके साथ हम उसको पूछने की कोशिश करेंगे। और हमारे दोस्त जो हैं, युवा दोस्त, उनको बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है और निराश वो ना हो, क्योंकि जवाब नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ कोई एग्जाम

0: ही चल रहा, बस हम छोटा मोटा प्रोग्राम में इंजॉय कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, कॉल कट चुका है। 01892224391 इस फ़ोन नंबर के माध्यम से आप पहुंच जाइए आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो युवा दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, किताबें पढ़ने से तो कोई भी जीनियस बन जाता है, लेकिन ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस हमें होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। हेलो जी, 01892224391 इस नंबर पर कॉल कीजिए और आ जाइए सीधे आकाशवाणी धर्मशाला की स्टूडियोज़। जी, फ़ोन कॉल ड्रॉप हो रही है किसी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, फ़ोन लाइन है और कभी कभी हमारी खुद की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो ये तो मशीनरी है, ख़राब हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे, एक आखिरी कोशिश करते हैं। हेलो हेलो जी, लगता है ये हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे या फिर हम इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, आप कोशिश यूं ही जारी रखिए और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आप संग जुड़ सकें और आपसे सवाल पूछ सकें, आपसे बातें कर सकें। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
1: आदिति नाम है मेरा।
0: आदिति कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: 8th क्लास में।
0: अरे वाह, 8th क्लास, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हिमाचल से।
0: कौन सी जगह हिमाचल में?
1: बदरूट।
0: ओके, बदरूट से बोल रही हैं। चलिए सवाल आपसे पूछें।
1: जी पूछ लीजिए।
0: जी जी, एक कमरा है साक्षी, ठीक है, उसमें चार कोने, कमरे में चार कोने होते हैं, पता है आपको, है ना। हर कोने में एक बिल्ली बैठी है, ठीक है, तो आपको हमें बताना है कि हर बिल्ली के सामने कितनी बिल्लियां हैं?
1: तीन।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया इसका। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी हमसे जुड़ने के लिए, और आपने झटपट से जवाब दे दिया। आप यूं ही जुड़े रहिए और जो भी आप, हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं? आदिति, ओके, चलिए कोई बात नहीं। आदिति, माफी चाहते हैं, हमने नाम गलत बोल दिया और कार्यक्रम में आपने, हाँ जी,
1: हमने आपको बड़ी बार फोन किया, आप उठाते नहीं।
0: अरे बाप रे, सॉरी सॉरी सॉरी, हम तहे दिल से शुक्रिया, सॉरी, माफी चाहते हैं कि हमने आपका फोन नहीं उठाया। आगे से ये गलती, ये गुस्ताखी नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि जब भी आदित्य का फोन आए हम जरूर से उठाएंगे, ठीक है आदित्य? ओके बेटू, थैंक यू कॉल करने के लिए। जी, आप भी इसी तरह से जुड़ सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, शिकायतें हैं इन्हें कि हम इनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। देखिए, कई बार होता है कि जिस वक्त फ़ोन आता है हम लोग सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं और सॉन्ग के बीच में हम कुछ समय तक फ़ोन नहीं उठाते हैं, और कई बार होता है फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन कॉल ड्रॉप हो जाता है, तो उनका फ़ोन हम नहीं उठा पाए। माफ़ी हम चाहते हैं, अगली बार कोशिश करेंगे कि उनका फ़ोन उठाया जाए, और हम तो कोशिश यही करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हम सभी के फ़ोन जो हैं उठाएं और सभी से बात करें। जी हाँ, आप इस समय जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है, और साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से भी आप हमें सुन रहे हैं। हेलो जी, एक बार फिर से फ़ोन कॉल ड्रॉप हो चुका है। जी, फ़ोन लाइन में कुछ दिक्कत है, शायद उसी वजह से फ़ोन कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। कार्यक्रम में अब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर लौटते हैं।
2: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
3: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
4: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
5: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: हेलो, हाँ जी जी जी, गुड इवनिंग, नाम बताएं।

0: जी घर में अगर कोई बच्चा है, यूथ का कोई है, तो आप बात करवा दें प्लीज़।
1: हाँ, अभी अभी करो। हेलो
0: जी जी बिल्कुल।
1: बेटा।
0: जी फ़ोन कॉल कट चुका है, कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। और 01892224391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है। और हेलो जीनियस में आज आपको भी मौका है जीनियस बनने का। और जीनियस एक बार हम फिर कहेंगे कि वो नहीं जिसे सब कुछ आता है, जीनियस वो है जो कोशिश करता है और सवाल पूछने की जिसमें हिम्मत है और सवाल पूछने से जो डरता नहीं है। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम रिया है, मैं
0: रिया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
2: कांगड़ा से बात कर रही हूँ।
0: रिया क्या करती हैं आप?
2: मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह, आज हमारे साथ जितने भी युवा दोस्त जुड़ रहे हैं सब 8th में पढ़ते हैं। चलिए सवाल पूछें आपसे।
2: हाँ जी,
0: चलिए, एक एक कमरा है और उस कमरे के बाहर 3 स्विच हैं, ठीक है, और कमरे के अंदर 3 ही बल्ब हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक बार कमरे में जाने का मौका मिलेगा अंदर, सिर्फ एक बार, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि कौन से स्विच के साथ कौन सा बल्ब जलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले स्विच के साथ पहला ही बल्ब जलेगा, बल्ब जो है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, आपको बताना है, आप बता सकते हैं कि कौन से स्विच से कौन सा बल्ब जलेगा। सोचिए सोचिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। चलिए कोई बात नहीं।
2: बटन पहले बल्ब जगता है, दूसरे
0: हाँ जी
2: बटन से पहला बल्ब जग सकता है।
0: जी बिल्कुल, हो कुछ भी सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट बताना है कि किस बल्ब के साथ कौन सा स्विच कनेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश आप कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश आपने की। अब आप जवाब सुनिए इसका। 3 स्विच हैं बाहर, ठीक है, तो एक स्विच हम ऑन करेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए ऑन ही छोड़ देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो स्विच ऑन है उसका जो अंदर बल्ब होगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम उस स्विच को बंद कर देंगे और फिर हम दूसरा स्विच जो है उसे ऑन करेंगे और अंदर चले जाएंगे। अब हम अंदर जाके देख सकते हैं कि जो हमने स्विच ऑन किया वो सेकेंड स्विच था और बल्ब जो ऑन है वो उसके साथ कनेक्ट है, सेकेंड स्विच के साथ, जो बल्ब गर्म होगा वो पहले स्विच के साथ कनेक्ट है और जो बल्ब बंद होगा और ठंडा होगा वो थर्ड स्विच के साथ कनेक्ट है। समझ आ गया आपको? जी बिल्कुल, तो अपने दोस्तों से भी अब ये सवाल आप कर सकते हैं। और कार्यक्रम में आपने कॉल किया और आप भी आज के जीनियस बने, कॉल के लिए शुक्रिया। जी आपके पास भी है मौका हेलो जीनियस के जरिए जीनियस बनने का, क्योंकि जीनियस वही है जो हिम्मत करते हैं। कॉल कीजिए हमें और जुड़ जाइए हमारे साथ 01892224391 पर। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम, मेरा
0: नमस्ते।
1: प्रेम ठाकुर है,
0: प्रेम
1: सय्यम ठाकुर, जिला कांगड़ा से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश।
0: आपका नाम एक बार फिर से कहेंगे?
1: सय्यम ठाकुर।
0: सय्यम
1: यस।
0: जी सय्यम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्लस टू में। जी सही, हम आपसे हम फिर तो जीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत टफ नहीं होगा, घबराइए नहीं। हेलो, हाँ जी संयम, आपका सवाल है कि आपको बताना है सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है?
1: मार्स।
0: नहीं, एक गेस और कर लीजिए। हेलो
1: हेलो, वीनस है।
0: जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं संयम, आपने कॉल किया और कॉल करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि सामने से क्या सवाल पूछा जाएगा और सवाल कितना कठिन हो सकता है। कोशिश करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। जी हाँ, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह, मर्क्यूरी। और एक सबसे मज़ेदार बात आपको बताएंगे कि सूर्य के सबसे

नजदीक होने के बावजूद भी बुध हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सूर्य बहुत गर्म होता है और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य के पास जो ग्रह होगा वो गर्म होगा, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र का घना वायुमंडल गर्मी को बहुत ज्यादा रोक कर रखता है। तो दोस्तों, सिर्फ तथ्य याद रखना काफी नहीं, उसके पीछे के कारण जानना भी जीनियस वाली बात है और हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाना भी जीनियस वाली बात है, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए जब हमें लगता है कि हमें सवाल पता नहीं है कि हमसे क्या पूछा जा सकता है, खासकर तब। जी, प्रोग्राम में अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, म्यूजिकल ये ब्रेक अपने युवा दोस्तों और श्रोताओं के लिए।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और अगले लिसनर हमारे साथ हैं। हेलो,
3: हेलो,

0: जी नाम बता दीजिए। आराध्या
1: मेरा नाम आराध्या है।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: जी 7th में आप पढ़ती हैं, और कौन सी जगह से बोल रही हैं?
1: मैं कांगड़ा से बोल रही हूँ।
0: जी कांगड़ा से आराध्या का फोन हमें आया है। आराध्या आपसे सवाल करें।
1: हाँ जी।
0: जी आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं आराध्या, मान लीजिए आपके पास एक माचिस है, ठीक है, और कमरे में एक मोमबत्ती है, एक लालटेन है और एक गैस का स्टोव रखा है, तो आप सबसे पहले जाकर के क्या जलाएंगी?
1: सबसे पहले मैं लाइट क्या बोलते कैंडल जलाऊंगी।
0: जी कैंडल आप जलाएंगी, लेकिन जलाएंगी किस चीज से? जी आराध्या यही है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, और कई बार हमें लगता है कि बहुत साधारण सा इसका जवाब होगा, हम फटाफट से दे देंगे, लेकिन जब हम अंधेरे कमरे में सबसे पहले अंदर जाएंगे ना, तब सबसे पहले हमें माचिस की तीली जलानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम कुछ जला सकते हैं, क्योंकि माचिस की तीली जलेगी तभी तो हमें कुछ दिखेगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल, आपने कॉल किया है और आपने जवाब देने की बहुत अच्छी सी कोशिश की है आराध्या, आप भी हमारे आज के जीनियस हैं, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
1: आपको कुछ कहना था?
0: जी आप भी हमसे जुड़ सकते हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 01892। हाँ जी
1: आप जब भी मैं फोन करती तो फिर आप मेरा फोन नहीं उठाते।
0: जी जी आराध्या आपको भी यही शिकायत है, चलिए हम आपसे भी क्षमा प्रार्थी हैं और आगे से ध्यान रखेंगे, आपकी कॉल ज़रूर उठाएंगे। जी जी बहुत शिकायतें हैं हमारे युवा दोस्तों को हमसे कि हम उनका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं, और कारण क्या कुछ हो सकते हैं, हमारी क्या कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, हमने आपको बताई, आप भी हमसे जुड़िए 01892224391 इस नंबर पर, और हम आपसे सवाल पूछेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सवाल का जवाब आप देंगे तभी आप जीनियस होंगे, आपने हिम्मत की है, और हिम्मत जो करते हैं वो अपने आप में जीनियस होते हैं। जी दोस्तों, ऑक्टोपस होता है आप जानते हैं, उसके पास 3 दिल होते हैं, 2 दिल जो होते हैं वो उसके गलफड़ों तक खून पहुंचाने में मदद करते हैं, और तीसरा दिल जो होता है शरीर के बाकी हिस्सों तक ये कार्य करता है। प्रकृति में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें हैरान करती हैं, और शायद इसी वजह से क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पूछने की और कुछ नया करने की जिज्ञासा अपने अंदर हमेशा बनाए रखिए। हेलो,
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: विक्रांत,
0: जी विक्रांत जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: 11th।
0: जी विक्रांत आपका सवाल है, बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास होती है लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं? हेलो,
2: हेलो।
0: हाँ जी विक्रांत जी बताइए, सवाल सुना आपने?
2: हाँ, एक बार रिपीट करोगे?
0: ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास होती है लेकिन उसका इस्तेमाल हमसे ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए, वो है आपका नाम। जी हाँ, आपका नाम जो है वो हमारा अपना होता है लेकिन हमसे ज़्यादा दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया, आप भी हमारे आज के जीनियस हैं।

तो दोस्तों आज का ये था प्रोग्राम हेलो जीनियस, और जितने भी हमारे जीनियस आज हमारे साथ जुड़े उनका बेहद शुक्रिया, और ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए और कामयाबी हासिल करते रहिए, और प्रश्न पूछने की हिम्मत रखिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछते हुए हमें कभी झिझकना नहीं है, क्योंकि सवाल जो है वो हमारी कमज़ोरी नहीं बताते, हमारी जिज्ञासा को बताते हैं। याद रखिए, जिस दिन सवाल पूछना बंद कर दिया उस दिन हमने सीखना बंद कर दिया। सो कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और प्रोग्राम में आज बस इतना ही। श्रोताओ, शुरुआत में हमने कहा था कि कुछ लोग हमें रास्ता बताते हैं और कुछ लोग हमें रास्ता खुद ढूंढना सिखाते हैं। आज के हेलो जीनियस के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि शिक्षक जो होते हैं वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते हमें, वो हमारे भीतर रास्ता तलाशने का हुनर पैदा करते हैं। एक जवाब नहीं मिलता तो कहते हैं एक बार फिर कोशिश करो, और हार नहीं मानने के लिए वो हमें तैयार करते हैं, हमेशा ऐसा कहते हैं तुम कर सकते हो। और जब हम सफल होते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी को होती होगी। और ऐसे ही हमारे हर शिक्षक को हमारी ओर से दिल से नमन, और सभी

आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रमों का विवरण।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की, जिन्हें हम हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा गराई दिया कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं 6:30 पर। 7:00 समाचार आप सुन सकते हैं, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी हम रिले करेंगे आकाशवाणी शिमला से। आकाशवाणी शिमला से ही 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8:00 आनंद लीजिएगा मिले जुले गीतों के कार्यक्रम होगा सबरस। देशभक्ति गीत 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर हिमदर्शन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसे हम आकाशवाणी शिमला से रिले करेंगे। 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती। 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और आकाशवाणी दिल्ली से ही सभा के अंत में आप समाचार सुन सकते हैं, जिनमें 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

श्रोताओ, ये था कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज आपको लिए चलेंगे, जहां से ठीक 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस पूर्व राष्ट्र

0: राष्ट्रपति व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में 32 अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा वर्ष 2025 के लिए एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा पीढ़ी के कौशल विकास पर बल दिया।
1: मैं सभी शिक्षक वर्ग से ये कहना चाहूँगा, आप व्यक्ति निर्माण करते हैं, आप विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य को बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर सरकार पूरे मन के साथ पैसा भी देती है, सब कुछ देती है, तो उसी तरह का अपना योगदान देना चाहिए। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से विशेष करके विद्यार्थियों में नवाचार की ओर, कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान दे पाएं, उसके लिए शिक्षक एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं एक बार फिर से सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हम इसी प्रकार से उत्कृष्ट कार्य करके विशेष करके विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने में उसकी योगदान दें।
0: इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा के विकास पर जोर दे रही है और सरकारी स्कूलों से पलायन को रोकने के लिए 147 स्कूलों को CBSE बोर्ड से जोड़ा गया है।
2: जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है हमारे विभाग में, उनको सम्मानित किया गया। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं शिक्षक दिवस पर मैं समस्त अपने शिक्षक वर्ग को बहुत बधाई देता हूं। हमने लगभग 147 स्कूलों में आपने स्कूलों को CBSE बोर्ड से एफिलिएट किया है और अभी आपका शुरुआती दौर है और ट्रांजिशन पीरियड है, तो निश्चित रूप में जो एक कदम उठाया गया है उसके पीछे सोच यही है कि जहां प्रतिस्पर्धा भी होगी और एक तरह का जो पलायन सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों में हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी।
0: समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने आज औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में सड़कों की बदहाली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन में भाग लिया। बिंदल ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में 1,00,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और 3,500 स्कूल मात्र एक एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले एक महीने के भीतर भाजपा राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश के 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी।
3: 1,07,000 पद सरकारी क्षेत्र में रिक्त हैं, भर्तियां की नहीं है, बेरोजगार युवकों के साथ आपने धोखा किया है, ठगी की है, छलावा किया है। पक्की नौकरी के नाम पर वोट खाने वाली कांग्रेस, उसके खिलाफ अब धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। आज यहाँ कालाअंब में जो सड़कों की दुर्दशा है, 3-3 फुट पानी बरसात में यहाँ खड़ा हो जाता है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, अनेकों की हड्डियां यहाँ टूट चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की बदनामी पूरे देश में सड़कों के कारण होती है।
0: राज्य ओबीसी संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने आज धर्मशाला में कहा कि राज्य सरकार को समिति द्वारा पिछले वर्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में दिए गए अधिकारों को लागू कर रही है, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हो पाया है। कौंडल ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति 20 सितंबर को पालमपुर से शाहपुर तक सामाजिक न्याय यात्रा निकालेगी।
4: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी तक 21 मांगों में से किसी भी एक मांग को पूरा नहीं किया है। ये कोई मांगे नहीं है, ये ओबीसी के संवैधानिक अधिकार हैं जो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, जिस पर केंद्र की सरकार ने हरी झंडी दिखाई हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है वो इन्हें लागू नहीं कर रही है। जो हमारा 93वां संविधान संशोधन है 2005 में हुआ था, 2006 में ये लागू हो गया था। ओबीसी वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है।
0: प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 6,81,000 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है और सरकारी सेवाओं को सरल व सुगम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इन राजस्व मामलों में 5,44,000 इंतकाल, 47,000 से अधिक तकसीम और लगभग 63,000 निशानदेही के मामले शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम की इस खूबसूरत गीतों की महफिल में सभी श्रोताओं का स्वागत। श्रोताओं, शाम तो रोज ही आती है, लेकिन कुछ शामें दिल की प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। ऐसी एक खूबसूरत शाम का किस्सा बयां कर रहा है आज का ये पहला गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरमई सांझ आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, शाम का वक्त है, रंग भी हैं, मौसम भी है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा चेहरा भी जो अचानक पूरी शाम को खूबसूरत बना दे। अब सवाल ये कि वो कौन है, नाम तो पता नहीं लेकिन शाम उसके रंग में जरूर रंग गई है। तो इसी दिलचस्प सवाल के साथ ये गीत लीजिए, सुनिए।

0: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
1: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
2: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमे गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: शाम के खूबसूरत गीतों की महफिल सजी है आकाशवाणी धर्मशाला पर कार्यक्रम सुरमई सांझ में। शाम ढले और किसी की याद ना आए, ऐसा भले कैसे हो सकता है। शायद इसीलिए शाम का वक्त अक्सर दिल के सबसे करीब होता है। इसी एहसास को बयां कर रहा है हमारा ये अगला गीत।

दिन की भागदौड़ के बाद जब थोड़ी शरीर को हम रेस्ट देते हैं, अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं और प्यारे प्यारे से गीत जब हम सुनते हैं तो एक बहुत ही बेहतर सा सुकून हमें मिलता है और मूड जो है वो एकदम बढ़िया सा हो जाता है। इसी मूड को अगर और बेहतर करने की बात हो और ये गीत ना बजे, ऐसा कैसा हो सकता है।

कार्यक्रम मौजां गराई दियां सुनने वाले साढ़े जितने भी श्रोता हैं, जितने भी बागवान किसान बागवान भाई भैन हैं, सबना जो साड़ा राम राम कने नमस्कार कने एक बारी फिरी कार्यक्रम च सारियां दा स्वागत। क्या हाल चाल हैं तुहाड़ा सारियां दे? असां उम्मीद करदे हैं कि सारे श्रोता जिहड़े हैं किसान बागवान भाई भैन होने हैं, सारे अपने अपने घरे स्वस्थ होने कने मस्त होने। गलांदे कि मौज जेहड़ी है सै मौज मस्ती अगर अस करना चाहन तो सक कदी भी सानू खरीदी के नहीं मिलती, कने कदी कदी मौज सानू उस जगह मिली आंदी जेहड़ी साढ़े दिले जो बड़ी पसंद आंदी, कोई ऐसी जगह जित्थों बैठी के सानू सुकून मिले, कने जिंदगी च जेहड़ी एक भाग दौड़ है तिस्ते सानू थोड़ी देर वास्ते एक ब्रेक दिया मिली आ, तो ग्रां की जिहड़ी जिंदगी है सै बहुत ही मस्त जिंदगी गलाई लीए तो कुछ गलती नहीं होनी इस, क्योंकि शहर च असा रेंदे तो थोड़ी भाग दौड़ सारी जिंदगी च है, भ्यागा उठना है तड़के, तो ग्रां च अगर हाँ गल करिए उठना है तो बाहर पूरा नज़ारा दिखना है, हरियाली चारों तरफ दिखने मिलती, पेड़ पौधे दिखने मिलने, कने पार पहाड़ा पर नज़र मारिए तो दिल इं खुश हो जाता। पर शहर च भी कुछ जगह ऐसा हैं जिन्हों के नज़ारे असा ले सकते, पर सांझे वाला टाइम नहीं है क्योंकि भाग दौड़ बड़ी है, प्याका उठा फटाफट बच्चे स्कूल भेजा फिर आपू भी कम है जाना, कने ग्रां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेतीबाड़ी, कने तिना भाई अपने खेतों में जाना तो खेतों पर भी तिना तिना पहाड़िया के दृश्य दिखने, कने पहाड़ियों का लुत्फ उठाना, कने कने हरियाली चारों तरफ अपने दिखनी, तो दिल जड़ा इसे अपने आप ही खुश रहा है। कने ग्रां की गल करिए लोग जड़े जलों थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता तो कट्ठे बेह करी गप शप लगती, कने चाह पानी एक दुए के घर, कने शहर की भाग दौड़ अहें टाइम ही नहीं मिलता कुसी के घर जाइए कुसी का हाल चाल पुछिए, बस फोन पर ही गल्ला आदियाँ, कने रिश्ते जड़े हैं सै मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्टा च हैं, कने तिस ही रहने, कभी टाइम लगे तो फोन खोली लीए दिखी लीए, कने कुसी की याद आई है तो फोन ने गल हो जाती, कने इतना टाइम नहीं कि असा जाई करी बैठीए, पर ग्रां च भाई लोग टाइम कढ़ी लैंदे अपने कम्मा भी कमा दे, कने टाइम भी कढ़ा दे, गलबात भी करा दे, एक दुए के कम जड़े हैं तिश भी हाथ बटांदे, चाहे किसानी की गल ले लीए कोई भी फसल जालू लानी है जालू कट्टनी है तो मिली जुली करी सारा एक दुए का काम करना है, तो बड़ा ही बेहतरीन जहा एक माहौल जड़ा है इस ग्रां का होंदा। कने मौजां गराई दियां साड़ा भी कार्यक्रम का नाँ है, असा कोशिश करते इस कार्यक्रम च मौजां लाने की, कने मौजां लगदियां लोक संगीत कन्नै, तो वह इस लोक संगीत कन्नै कार्यक्रम की शुरुआत करदे ते लोक गीत सुनदे हैं।

कार्यक्रम तुसा सुना करदे हैं मौजा गराई दियां आकाशवाणी ते धर्मशाला केंद्र ते कने कार्यक्रम च हुण असां अज दी जिहड़ी गलबात है तिसा जो अगे वधाणा है जी। किसान बागवान भाई बहनों, किसानी खेतीबाड़ी जड़ा है सै किसान बागवान भाई भैन का मुख्य काम है। कने खेतीबाड़ी जैलू भी किसान बागवान भाई भैन करते तो तिना जो उम्मीद होंगी कि असं इतनी मेहनत की है तो सो जो इसका फल जड़ा है मुनाफा जड़ा है अपनी फसल से सह भी ठीक ठाक मिले। तो असं अज गल करनी है बरसात का मौसम लग गया तो जैलू बरसात ज़्यादा जरूरत हो जाती तो पौद्या जी नमी है सह जरूरत ज़्यादा हो जाती तो इस नमी कने जे साढ़े पौधे हैं साड़ियाँ फसल हैं तो इन्हों खराब होने का बड़ा डर रहा। तो किसान बागवान भाई बहन जो बरखा है सह भी बड़ी जरूरी है कने नमी है जी सह फसलों वास्ते साढ़े पौद्या वास्ते साड़ी फसलों वास्ते बहुत जरूरी है। लेकिन इस चीज़ का सू ध्यान रखना है कि जमीन जी है सह लगातार गिली ना रहे पानी जड़ा है सह खेतर च खड़ोत्या ना रहे कने जी हवा है सह ठीक कने जे पौधे हैं तो इन्हें आवाजाही जी हवा जी है सह पूरे तरीके ने हो जी मन लिया जी सब्जियां हाँ थोड़ी पीड़िया पीड़ियाँ लाई होंगे मतलब जड़िया थोड़ी घनिया सब्जियां लगी होंगे तो इन्हें समस्या होने के ज़्यादा जड़े हैं सह ज़्यादा रहा कि इन्हें समस्या हुई आ जियाँ मन लिया हाँ टमाटर लाओ मिर्च लाओ बैंगन खीरा लौकी कद्दू गोभी वर्गिया जड़ी सब्जियां ने इन्हें नमी जी है सह मौसम के अनुसार उवें तो इस रोग लगने का जड़ा है सह फफूंद बनने कहने फिर जीवाणु जड़े हैं सह इस फसलों पर हमला करी दे। तो बड़ा जरूरी है कि असा इस तरीके ने काम करना है शुरू से ही कि साड़ी फसल जी

आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते तुसा सुना करदे हन कार्यक्रम मौजां ग्राईं दियां। कन्ने मौजां ग्राईं दियां कार्यक्रम च अज असां किसान बागवान भाई भैणा कन्ने जानकारी साझा करा दे हन कि बरसात दे मौसम च जड़े नमी ज़्यादा होई आंदी तिस कन्ने जड़े प्रकोप लगदे हैं, जिस कन्ने बीमारियां जड़ियां रोग जड़े साड़ियां खेतियां जो लगी सकदे साड़े पेड़ पौधियां जो लगी सकदे इन्हां दे बारे च अज गल करा दे। असां कन्ने असां गल कीती पानी दे बारे च। पानी श्रोताओ जे घट होए तां भी परेशानी, कन्ने ज़्यादा होए तां भी परेशानी, तां पानी जड़ा है उचित मात्रा ते जड़े साड़े खेतां च होए तिसते ज़्यादा नहीं होना चाहिदा ता साड़ी फसल जड़ी है सह सानू सही चीज़ दिंदी जिसकी अहां परिकल्पना की होंगी कि असा यह बाहना है तो सानू इतना इस मुनाफा मिले। तिसी गां गल करिए किसान बागवान भाई भैनों तो पौद्या जो हमेशा इं सरसरी नज़र नहीं मारनी, बड़े गौर कन्ने पौधे दिखने कन्ने जैलू सानू यह आदत है कि हाँ बड़े गौर कन्ने अपने पौधे दिखते तो बड़े फायदेमंद रहिंदी, क्योंकि फसलों जो बड़े गौर कन्ने दिखना बड़ा जरूरी है क्योंकि पौधा जड़ा है सह बोली तो नहीं पाता पर संकेत जरूर दिंदा है। पत्तियां जो गौर ने दिखा कि कुछ दाग धब्बा पत्तियां च तो नहीं है, पत्तियां कुछ पीलियां तो नहीं होना शुरू हुई, पत्तियां के किनारे जड़े इनसे खराब तो नहीं होना शुरू हुई हो, फल कई बार जड़ा इस बिच बिच सड़ना शुरू होई जांदा, कने डंठल जड़े होंदे तिन्हां च भी कुछ असामान्य दे निशान जड़े से सुजना लगी पौंदे। तो ये सारे जड़े संकेत हैं ये दस्सा दे कि पौधा जड़ा है कुसी समस्या कन्नै जूझा करदा है। तो साड़ी कोशिश तालू रहना चाहीदी कि इस समस्या का तालू ही समाधान किया जाए, क्योंकि साढ़े विशेषज्ञ जड़े हैं खेतीबाड़ी से संबंधित सानू हर विषय च जानकारी दिंदे, कने असां तिन्हां ते इस बारे च भी जानकारी ले सकदे। कने अगर खेतीबाड़ी जलो अहां शुरू करदे हैं ना ते पहले शुरू ची असा यह सारी जानकारी ली हो तो खेतीबाड़ी दे बीच जलू फसल बाही हो मनी लिया टमाटर दा बूटा है बाया कने से सानू फल दिया करदा है दी फलवार लगी हो है तो बीच अगर कोई ऐसी दे समस्या आई आती है तो पहले तो जानकारी सानू होगी तो असा एकदम जड़ा है तो जानकारी दे समाधान वास्ते उपाय करी सकते जड़े भी सानू दस्यो गए होने। कने तिस टाइम असा जाएंगे तो हो सकता क्या पता तिस टाइम एकदम तो जानकारी उपलब्ध हो ही पाए ना हो पाए तो तिसते पौधे जो जड़ा है सह ज़्यादा नुकसान जड़ा सहना पी सकता तो पौधा जड़ा है खराब भी हो सकता कने असां दी मेहनत जड़ी है सह मिट्टी च मिली सकती। तो कोशिश करनी है कि पौधे जो बड़े ध्यान ने दिखना कने जड़े भी संकेत पौधा दिंदा है तिस जो ध्यान ने दिखना कने तिसा समस्या का समाधान कढ़ना। हुण असीं एक गल कीती थी श्रोताओ कि पौधा जड़ा है तिस च हवा की आवाजाही है सभी जड़ी है बिल्कुल सही मात्रा च होना चाहिए, क्योंकि जी हाँ कुछ फसलां लाई होंदियां सह पौधे जड़े इनसे बड़े चिड़ी पौंदे तो सह कन्ने कन्ने होई आंदे तो हवा जड़ी है बिचे ते अच्छे ते क्रॉस होई पा इहदा सानू बड़ा ध्यान रखना है। कोई पौधा बड़ा ही ज़्यादा खिल रहा है तो कोशिश करिए कि मतलब पतला दिया धागा दिया मतलब बड़ा पतला भी नहीं कि दिसते नुकसान पौधे जो पहुँचे, लेकिन तुसीं थोड़ा जिहा इकट्ठा करने की कोशिश करनी कि पौधा थोड़ा इकट्ठा होई आ कने बाकी पौद्या के बिच आर पार जिहड़ी असे हवा लगे, क्योंकि पानी खाद जिहड़ा है पौद्या वास्ते बड़ी जरूरी है, कन्ने कन्ने हवा जिहड़ी है सह भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि उपर उपर अगर पौद्या हवा लगती रहेंगी तो इहदा भी कोई फायदा नहीं, थले तकर जड़ा तकर जड़ा है सह सारा पोषक तत्व जड़े हैं हवा हुई पानी हुई खाद हुई सब पूजना चाहिए है। तो कोशिश करनी कि हवा दा जड़ा है हवा जड़ी आवाजाही है सह भी प्रभावित ना होए। कार्यक्रम च

0: एक बारी असा फिर रुकना है कने एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लेना है तिसते बाद एक लोक गीत असा तुहानू जो होर सुनाना है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
4: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
3: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
4: रेबीज जानलेवा है लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश।

मौज अगर आई दिया कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से तुसा इस वेले सुना करते हैं श्रोताओं कने जाते जाते किसान बागवान भाई भैन जो असा गला है कि नमी के कारण जोड़े साड़िया फसल हैं साढ़े बाग बगीचे हैं साढ़े सुआड़ू हैं लाड़ू सुआड़ू तिना जो कोई प्रकोप लगी सकता कोई रोग लगी सकता तो ध्यान पूरी अच्छी तरह से रखना है वास्ते खेत जोड़े हैं सभी साफ सुथरे रखने हैं खेतों जो स्वच्छता है सभी रोग प्रबंधन का एक हिस्सा ही होंगे जड़िया सड़िया गलिया सब्जियां होंगे हाँ सह

करना ऐसा है तो सह फसल भी जड़ी है खराब हो सकती है। इसके कन्ने कन्ने जो औजार हैं इन्हों का भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। कन्ने कन्ने अपने हाथ पैर भी अच्छे से धोने, ऐसा ना हो कि हाँ कोई संक्रमित जोड़ा पौधा है तुम्हें तीदी कांट छांट की इसके बाद सही हाथ हाँ कुछ साफ पौधे लाई थे इस वजह से भी संक्रमण जोड़ा फैली सकता। जिस तरह अस अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना किसान बागवान भाई भैनों, इसी तरह से सू अपन फसलों का भी ध्यान रखना है, कन्नै उसी तरह से स्वच्छता का भी ध्यान रखना है ताकि जे असानी फसल है अच्छी अच्छे ते लहराए अच्छे ते उगे कन्नै जो हाँ अपनी फसल ते चांदे हैं सह आमदनी सह मुनाफा जड़ा है सह असा कमाई सकन। गलबात जो असा इतों ही विराम जलाना है कन्नै चलदे चलदे तुहानू एक लोक भजन सुनवाना है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में पहले हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉपआउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि

0: शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? इस प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Lalima Aneja Dang. President Draupadi Murmu today said that a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. She asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She said that the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers. The President underlined that many students come from economically disadvantaged families who are first-generation learners or who transition from ordinary village schools.

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। इस समय 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई और बहनों को हमारा नमस्कार। किसान बागवान भाई बहनों, आकाशवाणी शिमला केंद्र में किसानवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा।
6: सभी आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ अशोक ठाकुर,
7: और मैं हूं हरी सिंह चंदेल।
6: चंदेल जी, सभी किसान और बागवान भाई और बहनों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और अपने कामकाज में लगे भी होंगे। इन दिनों देखो किसान भाई, आप कई तरह के सब्जियां जो है अपने खेतों में लगाते हैं, खासतौर पर शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, मिर्च, सभी तरह की सब्जियां जो है इन दिनों आपके खेतों में लगी होती है। तो निवेदन हम किसानों आपसे यही करना चाहेंगे कि आप अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि बरसात का मौसम चला है तो बरसात के मौसम में इनमें कई तरह के रोगों और कीटों के पनपने की आशंका भी बढ़ जाती है। खेतों का निरीक्षण करते रहें, इन रोगों और कीटों को पहचाने और नियंत्रण के लिए समय पर भी आप कार्य करते रहें।
7: जी, और बात करें बागवानी की तो इन दिन जो है ऊपरी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में सेब की तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम जो है जोरों पर रहता है। तो किसान भाई समय रहते अपने फलों की अच्छी तरह से पैकिंग कर ले ताकि उन अच्छे भाव जो है मंडी में मिल सके। और जो बागवान भाई नए बगीचा लगाना चाहते हैं तो नए फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने और खेतों में समतलीकरण का काम भी इस महीने जो है हमारे बागवान भाई शुरू कर सकते हैं।
6: बिल्कुल जी सर, इन सब बातों का आप ध्यान रखें, समय पर अपने कामों को निपटाएं ताकि अच्छा उत्पादन आपको मिलता रहे और आपकी आर्थिक स्थिति भी जो है अच्छी बनी रहे। सर, जहां तक बात है कार्यक्रम की तो कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे काम की बातों के अंतर्गत उपोषण कटिबंधीय फलों की पौधरोपण संबंधी जानकारी, साथ ही साथ सुनाएंगे लोकगीत और साथ ही साथ सर आपको जानकारी दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन के महत्व और देसी मधुमक्खी के संरक्षण के बारे में। इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा और उनसे जानकारी हासिल करेंगे अश्विनी। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से, और काम की बातों के अंतर्गत आपको बताएंगे उपोषण कटिबंधीय फलों की पौध रोपण संबंधी जानकारी के बारे में। सर, सबसे पहला हम आपको यही बताना चाहेंगे कि उपोषण कटिबंधीय फलों की जब बात आती है तो प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों और घाटियां जो कि समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन, सिरमौर जिलों के निचले क्षेत्र जो है प्रमुख रहते हैं। इन क्षेत्रों में नींबू प्रजाति फल, लीची, आम, अमरूद, लोकाट, पपीता और अन्य फल जिनमें की आड़ू और पलम की कुछ प्रजातियों का उत्पादन सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। इन फलों के पौधे सदाबहार होते हैं। इनके पौधे शीतोष्ण फलों जिनमें की सेब, नाशपाती, खुमानी की भांति पर्णपाती नहीं होते और ये फलदार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं।
7: जी किसान भाइयों, बाग लगाने के पहले उस पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि फलदार पौधे दीर्घकालीन होते हैं, इसलिए बाग लगाने की योजना बनाने से पहले कुछ एक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपने स्थान का चुनाव कैसे करना है, स्थानीय मिट्टी और जलवायु को ध्यान में रखकर फल विशेष का कैसे चयन करना है, और आपके बागीचे में सिंचाई का जो है उचित प्रबंध हो, अगर कम उपजाऊ जमीन

0: तो मिट्टी की दशा को कैसे सुधारना है और जो आपका बगीचा है उनको जानवरों से कैसे बचाना है उसके उपाय भी आपको पता होने चाहिए। पौध रोपण योग्य पेड़ और नव रोपित पौधों की देखभाल आपने कैसे करनी है, इन सब बातों का आपने ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना है, तभी नया बगीचा लगाना है।
1: बिल्कुल जी, एक सारी अब बात आती है बागीचों के लिए उपयुक्त तो भूमि और स्थान का चुनाव आप किस तरह से कर सकते हैं। चलो, जब भी आप बगीचा लगाएं तो एक अच्छा बगीचा लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पाला कम पड़े और जो प्राकृतिक विपदाओं और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित हो। स्थान ऐसा हो जहां आसानी से पहुंचा जा सके। सभी तरह की मिट्टी में फल पौधे नहीं आप लगा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए फल पौधों की सही बढ़ोतरी और अधिक और गुणकारी फल उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। मिट्टी रेतीली दोमट से बलुई दोमट और उपजाऊ होनी चाहिए। बगीचा लगाने से पहले मिट्टी की जांच आप अवश्य ही करवा लें और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी भी आप अवश्य ही ले लें। भूमि की भीतरी सतह पथरीली ना हो और उसमें अधिक कंकर पत्थर ना हो और ना ही उसमें जल खड़ा रह सके। जमीन के अंदर कठोर सतह जड़ों के बढ़ने और फैलने में बाधा उत्पन्न करती है।
0: जी, अब बात करते हैं रेखांकन की। तो प्रत्येक फलदार पौधे को अच्छी तरह विकसित करने के लिए रेखांकन करना अति आवश्यक है। इसमें बाग में होने वाले कार्य अच्छी तरह से किए जा सकते हैं और प्रत्येक पौधे को अच्छी तरह से रोशनी मिलती रहती है। बागीचा ऐसी व्यवस्था और विधि द्वारा लगाना चाहिए जिससे पौधे का पूर्ण विकास हो तथा उत्पादन क्षमता भी बढ़ सके। समतल तथा घाटी वाले क्षेत्रों में वर्गाकार या आयताकार विधि से पौधे जो है लगाए जा सकते हैं और ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि से पेड़ लगाना उत्तम रहता है। किसी भी विधि से बागीचा लगाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि आयु के साथ पेड़ों को फैलने के लिए उचित स्थान, प्रकाश तथा वायु जो है मिल सके और पौधों की शाखाएं जो है आपस में ना उलझें। बागीचों में पौधों के बीच के खाली स्थान में कुछ समय तक कुछ अनुमोदित फसलें भी उगाई जा सकती है।
1: सर, वो बात चली है उपोष्ण कटिबंधीय फलों की पौधरोपण संबंधी जानकारी के बारे में, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि पौधों के चुनाव की जब सनियों बात आती है तो पौधे स्वस्थ और रोग रहित होने चाहिए, इस बात को जो है आप सबसे पहले सुनिश्चित कर लें। इसके लिए पंजीकृत पौधशालाओं और विश्वस्त स्रोतों से ही आपको पौधे खरीदने होते हैं। कलम की जोड़ भूमि से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर जो है किसान में ऊपर होनी चाहिए। सनियों, अब बात आती है पौध रोपण की। पौध रोपण के समय आपको किन किन खास बातों का जो है ध्यान रखना होता है। पौधा लगाने से 1 महीने पहले आपको तैयार कर लेना होता है ताकि मिट्टी में मिले उर्वरक और खाद पौधों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और मिट्टी अपने स्थान पर ठीक ढंग से बैठ सके। साधारणतः गड्ढे का माप 1 बाई 1 बाई 1 मीटर यानी 1 घन मीटर होता है। गड्ढा गोलाकार या चकोर खोदा जा सकता है और गड्ढा खोदते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि वहाँ की ऊपरी भाग की 30 सेंटीमीटर या 1 फुट मिट्टी और नीचे की 70 सेंटीमीटर की 2 फुट दूसरी ओर रखें। धूप में कीड़े अंडे व अन्य जीवाणु मर जाते हैं, इस बात का जो है आप ध्यान रखें। अगर निचली भूमि में पत्थर या कड़ी सतह हो तो उसको अलग कर दें। गड्ढे में मिट्टी भरते समय क्लोरोपायरीफास 50 मिलीलीटर, धनुष्मान, रूबान, डरमेट, दरसमान, फोर्स, टाइसल, BCC 10 लीटर पानी प्रति गड्ढा के हिसाब से जो है आप मिला लें।
0: जी, और किसान भाइयों, पौधे को गड्ढे के ठीक मध्य में तथा उतनी ही ऊंचाई पर लगाना चाहिए जितना कि वह पौधशाला में था। यदि क्षेत्र की मिट्टी पथरीली हो और मिट्टी की गहराई कम हो तो गड्ढे का आकार बढ़ा लें और जंगल की ऊपरी सतह से मिट्टी लेकर गड्ढे में भर लें। पौधरोपण के बाद इसके आसपास की मिट्टी पैरों से दबा दें ताकि पौधे की मिट्टी जड़ों के साथ ठीक से बैठ जाए।
1: चलो, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पौधा लगाते समय कुछ एक बातों का जो है आप खास तौर पर ध्यान रखें। स्वस्थ हरे पत्तों वाले 1 वर्ष की आयु वाले पौधों का ही जो है आप चुनाव करें। मुख्य तना सीधा व बिना शाखा के हो, इस बात का भी जो है आप अवश्य ही ध्यान रखें। पौधे गाची मिट्टी के साथ लगाए जाते हैं और गड्ढे के ठीक मध्य में सीधा पौधा स्थापित करें और वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर रख लें। उस मिट्टी को गाची के ऊपर डालकर दबा दें और पौधे स्थापित करने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर लें। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पौध रोपण प्रायः वर्षा ऋतु की प्रथम वर्षा के साथ ही किया जाता है और इस समय भूमि की नमी और उचित तापमान होने के कारण पौधे जड़ पकड़ लेते हैं। सिंचित क्षेत्रों में पौधे वसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च में भी आप लगा सकते हैं।
0: जी, अब बात करते हैं कि छोटे पौधों की जो देखभाल आपने कैसे करनी है। तो किसान

0: भाइयों, छोटे पौधे को सहारा देने के लिए इस तरह से डंडे लगाएं ताकि जड़ों को क्षति ना पहुंचे और उन्हें तने के साथ बांध दें, परंतु जैसे ही इनकी आवश्यकता ना हो इन्हें निकाल दें। जितना संभव हो पौधों के इर्द गिर्द बनाए गए तौलिए खरपतवार मुक्त रखें और मिट्टी में अपेक्षित नमी बनाए रखें।
1: तो किसान भाई और बहनों, ये तो थी जानकारी उपोषण कटिबंधीय फलों की पौधरोपण संबंधी जानकारी के बारे में। अब किसानों कार्यक्रम में आपको इंतजार होगा एक लोकगीत का, तो किसानों आइए सुनते हैं किशन वर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना किशन वर्मा की आवाज में ये लोकगीत। तो अशोक जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का। आज का विषय है हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन का महत्व एवं देसी मधुमक्खी का संरक्षण। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा और उनसे बातचीत करेंगे अश्विनी।
1: किसान भाइयों, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैसा कि हमारा जो आज का मुख्य विषय है हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन का महत्व और एपिस सेरेना का संरक्षण, तो इस बारे में मैं पहले आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन की क्या

0: परंपरा रही है।
1: किसान भाइयों, जैसा हम सब जानते हैं, हिमाचल में मधुमक्खी पालन सदियों से होता आ रहा है।
0: जी,
1: ग्रामीण परिवार पारंपरिक लकड़ी के बॉक्सों में और मिट्टी के छतों में मधुमक्खी पालते थे। यहाँ की जलवायु, विविध फूलों वाले जंगल और बाग इस क्षेत्र को मधुमक्खी पालन के लिए आदर्श बनाते हैं। अभी आज के परिदृश्य में अगर मैं कहूँ तो हिमाचल में मधुमक्खियाँ कम से कम 800 से 1000 लोग इस व्यवसाय को कर रहे हैं। हमारे पहली ऐसी स्टेट है हिमाचल जहाँ इस मधुमक्खियों पोलिनेशन के लिए क्रॉप्स में यूज होते हैं। और केवल सेब में ही 1,20,000 हेक्टेयर में हमारे अभी कम से कम एक हेक्टेयर में 4 बॉक्सों के हिसाब से 5,00,000 बॉक्सों की डिमांड रहती है। तो हिमाचल में इस परिदृश्य में इसकी अत्यधिक महत्ता बढ़ जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी। इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि मधुमक्खियाँ केवल शहद ही देती हैं या उनका कोई और भी योगदान है?
1: शहद, मोम व मधुमक्खी द्वारा किए गए उत्पाद ये उसके प्राकृतिक उत्पाद है, लेकिन मधुमक्खी का सबसे बड़ा योगदान परागण क्रिया में व वातावरण में विविधता बनाए रखना, वातावरण में कार्बन क्रेडिट को बढ़ाना, एवं कहा जाता है कि इस दुनिया में 80-90% जो परागण प्रक्रिया है वो मधुमक्खियों द्वारा ही की जाती है, जिसमें मुख्यतः फसलें हमारे यहाँ उगाई जाने वाली जैसे सेब, नाशपाती, आलूबुखारा, टमाटर, खीरा व कोई भी दूसरी फूलों वाली फसलें है या दूसरी मेडिसिनल प्लांट्स है, सब मधुमक्खियों के ऊपर परागण प्रक्रिया के लिए आधारित है।
0: जी,
1: तो इस तरह मधुमक्खियों की विशेषता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
0: जी बिल्कुल, मधुमक्खियों की विशेषता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हर तरह का परागण मधुमक्खियों द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि फसल और औषधीय जो हमारे पौधे हैं ये पनप पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोता आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि एपिस सेरेना, जो कि हमारा आज का मुख्य विषय है, ये कौन सी मधुमक्खी है और ये क्यों खास है?
1: इस दुनिया में जो मधुमक्खियों की टोटल स्पीशीज है वो कम से कम 20,000 है, जिनमें शहद उत्पादन करने वाली 4 ही स्पीशीज है, जिसमें एपिस डोर्साटा जो जंगली मक्खी हम जंगल में देखते हैं, एपिस सिराना जो हमारी देसी मधुमक्खी है, काली मक्खी है जिसे माओ कहते हैं, जो हमारे घरों में पाली जाती है, वो उस एपिस सिराना है। तीसरी आती है हमारी एपिस मेलिफेरा जो विदेशी मक्खी है जिनको हम बक्सों में पालते हैं, और चौथी है हमारी एपिस फ्लोरिया, इसके छोटे छोटे हमारी छोटी छोटी झाड़ियों में निचले क्षेत्र में मिलते हैं। ये 4 ही मधुमक्खियां हैं जो हमारे शहद बनाती है। तो इनमें मुख्यतः हमारे यहाँ 3 मधुमक्खियों की स्पीशीज पाई जाती है, जंगली मक्खी की, एपिस सिराना जिनको हमारे लोग या हमारे किसान पुश्तों से पाल रहे हैं या तीरों में या लॉग हाइव में या मड हाइव में, तो ये वो वाली मक्खी है, ये हमारे अपने जलवायु में पाई जाती है। यह आकार में छोटी होती है, ऊंचाई और ठंडी जलवायु में आसानी से जीवित रहती है। इसकी खासियत यह है कि कम संसाधन में भी यह बहुत अच्छा परागण करती है और बीमारियों की भी इसमें कम अपेक्षाकृत इन्फेक्शन रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये देसी मधुमक्खी है और इसमें जो है यहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत कम लगती है क्योंकि यहाँ के वातावरण के अनुकूल है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इस देसी प्रजाति को कोई खतरा भी है?
1: जी हाँ, आजकल बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ गई है। हमारे खेती में एक तरह की खेती का विस्तार होना, जैसे एक तरह की ही फसलें उगाना, जब हमारे हिमाचल में अब हॉर्टिकल्चर का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है जिसमें मुख्यतः एक तरह की ही फसलें उगाई जाती है, जिससे क्या होता है उनमें फ्लावरिंग भी एक ही समय पर आती है, उसके बाद मधुमक्खियों को फूलों का अभाव पड़ जाता है, वह उस क्षेत्र में उन्हें खाना नहीं मिलता है। खेतों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग जिसके कारण वो मर जाती है और वो उसके लिए सेंसिटिव होती है, उसका समय भी जब हमारा फ्लावरिंग हो उसमें उसका सबसे कम उपयोग होना चाहिए। जंगलों की कटाई में जंगल साफ हो रहे हैं, एक तरह की फसलें लग रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और विदेशी मधुमक्खियां की जो प्रजाति है जैसे एपिस मेलिफेरा है, जब हम उन्हें लाते हैं तो फूड के लिए कंपटीशन हो जाता है, बीमारियां एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मधुमक्खियों को बहुत असर पड़ता है। और मुख्य सबसे बड़ी वजह है जल

0: परिवर्तन। जब भी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, हमारी इस मधुमक्खी को थोड़ा ठंडा टेम्परेचर पसंद है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसे भी अपना स्थानांतरण जिस वातावरण में पहले ही जीवित रहती थी उसे छोड़ के कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, और जो दूसरे आपके फ्लोरा है फौना है वो भी उसी तरह चेंज हो रहे हैं, उन पे भी अत्यधिक प्रेशर है। इसलिए ये बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारी देसी मधुमक्खी के लिए खतरा बनी हुई है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई कि इस तरीके से जो है हमारी देसी मधुमक्खियों का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमारा सभी किसान और बागवान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि कीटनाशकों का छिड़काव जो है वो उपयुक्त अवस्था में ही करें और अत्यधिक कीटनाशकों का छिड़काव ना करें, जंगलों का जहां तक हो सके उनका संरक्षण करें और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें ताकि हमारी देसी प्रजाति की मधुमक्खियाँ अच्छी तरह से पनप सके। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि इनके लिए क्या क्या खतरे हैं, लेकिन क्या इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कोई उपाय भी किए जा सकते हैं?
0: जी हाँ, इस प्रजाति के संरक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक वो अपने तौर पे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले आज के परिदृश्य में हमें किसानों को जैविक खेती अपनानी होगी या उन्हें प्रशिक्षित करना होगा
1: जी।
0: दूसरा है कीटनाशकों का उपयोग कम से कम, अगर करना भी पड़े तो ऐसी अवस्था में ना करें जब परागण में मधुमक्खियां आपके खेतों में व्यस्त हो, उस समय कम से कम ऐसे कीटनाशक यूज किए जाए जो या मधुमक्खी को हार्म ना करे या ना ही किए जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। और इनको जैसे हम पहले भी पालते थे पारंपरिक लकड़ी के बॉक्सों में पालते थे, परंतु अब हमें उसका बैलेंस बनाना होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक बक्सों का संतुलन करके उन्हें हमें सुरक्षित करना होगा। जैसे विभाग ने भी ट्राई किया है, पीछे हमने मड हाइव टेक्नोलॉजी सबको दी है कि आप एक जगह मधुमक्खी को अगर पालना है तो आप कॉस्ट फ्री एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि केवल मिट्टी घास और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से आप बना सकते हैं और स्थायी तौर पे उसमें मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अगर उसमें मधुमक्खियां टिकती है तो इसका मतलब है आपके चारों तरफ जो आपकी प्रैक्टिसेस है, चाहे आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या कोई और, तो बहुत अच्छी है। अगर वो वहां से भागती है तो आप समझ लीजिए कि आप अत्यधिक अंधाधुंध या कीटनाशक यूज कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं या वहां पोल्यूशन है, तो वो जगह जहां से मधुमक्खियां माइग्रेट कर जाती है वो जगह मनुष्यों के लिए भी रहने के लिए उचित नहीं मानी जाती। इसलिए सरकार और विश्वविद्यालय को मिलकर ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना होगा। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, हम समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। हमारी और भी जैसे किसी ने स्वरोजगार के लिए अगर मधुमक्खी पालन करना है तो उसमें हमारा बहुत सारे सब्सिडी के प्रोग्राम है। हम इसके लिए सर्वप्रथम अगर कोई भी युवा इसे कमर्शियल तौर पे करना चाहे तो विभाग को एक एप्लीकेशन दे सकता है, उसमें हम 5 या 7 दिन की उसको ट्रेनिंग दे के इस व्यवसाय के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं अगर इससे कोई अपना भविष्य में स्वरोजगार का साधन बनाना चाहता है। और हमारे वॉलेंटियरली हमारे जो आने वाली जनरेशन है जैसे बच्चे हैं युवा है, इनको मधुमक्खियों की संरक्षण की जागरूकता बढ़ाई जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि कहा कि हाँ, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मधुमक्खियों की उपयोगिता के विषय में पता होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि युवा पीढ़ी के लिए इसमें क्या अवसर है?
0: जैसा मैंने अभी आपको बताया, विभाग बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें हम 80% तक अनुदान देके, जैसे 50 बॉक्सेस से आपने शुरू करना है, जैसे मैंने कहा था पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप अगर आप स्वरोजगार करना चाहेगी तो 50 बॉक्सों से आप शुरू कर सकते हैं, उसमें हम सारे उसको इक्विपमेंट भी देते हैं और 1,76,000 की 2,00,000 पर इन्वेस्ट करने पे उसको सब्सिडी देते हैं और वो आराम से इसे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। इसे न केवल शहद में ही व्यवसाय होता है, मधुमक्खी के घर से बहुत सारे ऐसे और भी उत्पाद मिलते हैं जो कि बाजार में बहुत अधिक कीमत में बिकते हैं, जिनमें रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, बी वैक्स है, बी वेनम है, आपका पराग है, और मधुमक्खियों को अब तो एपीथेरेपी में यूज किया जाता है इलाज के लिए, उसके डंक को यूज किया जाता है। आपने एपीथेरेपी सेंटर देखे होंगे, ये उसकी जो मधुमक्खी के बक्से की हवा है वो अस्थमा के लिए लोग उसको इनहेल करते हैं। फॉरेन में ऐसे बहुत सारे ट्रेंड है, हमारे देश में भी ये चीजें अभी इसको हमें पर्यटन के साथ जोड़ने की अति आवश्यकता है
1: जी,
0: जिसमें हम अपने हनी विलेज डेवलप कर सकते हैं। टूरिज्म की बहुत सारी ऐसी

0: जहाँ पे हम ऑर्गेनिक अपने हिमाचल के 10 ब्रांड रख के, वहाँ की प्रकृति के अपने सिराना मधुमक्खियाँ रख के, उनसे शहद लेके, और ये सारी चीजें एक व्यवसाय के रूप में युवा पीढ़ी को आकर्षित करती है। भारत में इस समय बहुत सारा स्कोप है, खाली है ये फील्ड। यहाँ अभी तक कोई कार्य ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई, हनी प्रोसेसिंग में नहीं हो पाई इतनी, तो हम विभाग इसको बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो इसलिए युवाओं के लिए बहुत सुंदर अवसर है इस व्यवसाय में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं, आपने सुना कि मधुमक्खी पालन न केवल आजीविका का साधन है बल्कि हमारी कृषि और पर्यावरण की रीढ़ भी है। आइए हम सब मिलकर एपिस सेरेना का संरक्षण करें और हिमाचल को मधुमक्खियों का स्वर्ग बनाएं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन के महत्व और एपिस सेरेना के संरक्षण के विषय पे बहुत ही सुंदर जानकारी दी। उम्मीद है हमारे मधुमक्खी पालक भाई बहन तथा साथ ही साथ किसान और बागवान भाई बहन भी इस जानकारी को अच्छे से सुनेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।
2: सानू, ये तो सुनिए आपने जानकारी हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन का महत्व और देसी मधुमक्खियों का संरक्षण। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा और उनसे बातचीत कर रहे थे अश्विनी। सानू, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी से जो है लाभ भी उठाएंगे। चंदेल जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है और एक किसानियों को लोकगीत सुनाने का, तो किसानियों आइए सुनते हैं मीनाक्षी तनवर की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना मीनाक्षी तनवर की आवाज में ये लोकगीत।
1: किसान श्रोताओं, अब तो किसान वाणी कार्यक्रम का समय भी यहीं संपन्न हो चला। सभी किसान और बागवान भाई और बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 MHz, DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर 69 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया अलंकृत। समाज में अध्यापकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रदेश के 32 अध्यापकों को मिले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास पर दिया बल। सांसद कंगना रणौत ने धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर जताई नाराजगी। सुस्त कार्यशैली पर अधिकारियों को लिया आड़े हाथ।

0: और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अगले एक महीने में 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 69 स्कूल शिक्षक शामिल रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में अध्यापकों की अहम भूमिका है और विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोक भवन में हुए राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में 32 अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा वर्ष 2025 के लिए एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सेवाएं दे रहे 32 अध्यापकों के लिए आज का दिन यादगार रहा, जब राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से अलंकृत किया। राज्यपाल ने पुरस्कार पाने वाले सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में वे अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा पीढ़ी के कौशल विकास पर बल दिया।
3: मैं सभी शिक्षक वर्ग से ये कहना चाहूंगा, आप व्यक्ति निर्माण करते हैं, आप विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य को बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर सरकार पूरे मन के साथ पैसा भी देती है, सब कुछ देती है, तो उसी तरह का अपना योगदान देना चाहिए। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से विशेष करके विद्यार्थियों में नवाचार की ओर, कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान दे पाए, उसके लिए शिक्षक एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं एक बार फिर से सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हम इसी प्रकार से उत्कृष्ट कार्य करके विशेष करके विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने में उसकी योगदान दें।
2: इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा के विकास पर जोर दे रही है और सरकारी स्कूलों से पलायन को रोकने के लिए 147 स्कूलों को CBSE बोर्ड से जोड़ा गया है।
4: जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है हमारे विभाग में, उनको सम्मानित किया गया। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं शिक्षक दिवस पर मैं समस्त अपने शिक्षक वर्ग को बहुत बधाई देता हूं। हमने लगभग 147 स्कूलों में आपने स्कूलों को CBSE बोर्ड से एफिलिएट किया है और अभी आपका शुरुआती दौर है और ट्रांजिशन पीरियड है, तो निश्चित रूप में जो एक कदम उठाया गया है उसके पीछे सोच यही है कि जहां प्रतिस्पर्धा भी होगी और एक तरह का जो प्लान सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों में हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी।
2: समारोह में एक शिक्षक को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों ने कहा कि उनका ये पुरस्कार सभी अध्यापक वर्ग का सम्मान है।
5: मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है और मैं हमीरपुर के एक छोटे से स्कूल जलाड़ी से हूँ। एज इको क्लब इंचार्ज, मेरा एक पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जो है वो सहयोग रहता है और बच्चों को जो है नवाचार से जोड़ना, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, भारतीय सेना का क्षेत्र है, सब जगह महिलाएं एक साथ खड़े होके अपना सहयोग दे रही हैं।
6: मैं आज का ये सम्मान हिमाचल प्रदेश के हर उस शिक्षक को समर्पित करता हूँ जिन्होंने 26 साल की मेरे कार्यकाल में जो मेरी जर्नी रही है उसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव ला सके है। मेरा प्रयास रहा है कि हमने जो भी शिक्षा के लिए नई नीतियाँ बनी है उसको हम किस तरह से ग्रासरूट तक उतार पाए और किस तरह उससे बच्चों का फायदा हो। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल सरकार ने मेरे काम को पहचाना।
2: इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

0: के समाचार अंतराल के बाद।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, सांसद कंगना रणौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि के तहत धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों में नाराजगी जताई है। आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक में उन्होंने सुस्त कार्यशैली को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। कंगना रणौत ने कहा कि सांसद निधि के तहत दिए गए 11 करोड़ रुपए में से करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि बिना इस्तेमाल के पड़ी है। हमारे मंडी संवाददाता मुनीश सूद के अनुसार, सांसद ने बैठक में कड़े शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी और जिम्मेदारी तय कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंगना रणौत ने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 316 कार्यों की सिफारिश की गई है, लेकिन इनमें से अभी तक मात्र 73 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं केवल फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश भर की पंचायतों को कूड़ा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जा रही है। सोलन जिले के लिए 40 ई रिक्शा प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन में जिले की 7 पंचायतों के लिए ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में ये ई रिक्शा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कूड़ा निष्पादन हो सकेगा।
3: स्वच्छ भारत मिशन है, इसके तहत ये हमारे विधानसभा क्षेत्र को, जिला सोलन को तो ऑलमोस्ट आई थिंक लगभग 40 के करीब मिले हम लोगों को, ताकि कूड़ा प्रबंधन विल टेक सम गुड शेप। और ये कूड़ा प्रबंधन के जो गाड़ियां बांटी है ये भी अपना क्षमता के अनुसार अच्छा काम करेंगे।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार हर मोर्चे में विफल रही है और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने आज औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में सड़कों की बदहाली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन में भाग लिया। बिंदल ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं और 3,500 स्कूल मात्र एक एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले 1 महीने के भीतर भाजपा राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश के 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी।
4: 1,07,000 पद सरकारी क्षेत्र में रिक्त है, भर्तियां की नहीं है, बेरोजगार युवकों के साथ आपने धोखा किया है, ठगी की है, छलावा किया है। पक्की नौकरी के नाम पर वोट खाने वाली कांग्रेस, उसके खिलाफ अब धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। आज यहाँ कालाअंब में जो सड़कों की दुर्दशा है, 3-3 फुट पानी बरसात में यहाँ खड़ा हो जाता है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, अनेकों की हड्डियां यहाँ टूट चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की बदनामी पूरे देश में सड़कों के कारण होती है।
0: पश्चिम बंगाल के एक मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट के तहत ये प्रतिनिधिमंडल हिमाचल के दौरे पर है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों से साकार किया जा सकता है, जिसमें मीडिया की अहम भूमिका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर 69 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया अलंकृत। समाज में अध्यापकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रदेश के 32 अध्यापकों को मिले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास पर दिया बल। सांसद कंगना रणौत ने धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर जताई नाराजगी। सुस्त कार्यशैली पर अधिकारियों को लिया आड़े हाथ। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अगले 1 महीने में 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब रोजगार समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में अराजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैचवाइज जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा जाना है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यावहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बारनेस कोर्ट शिमला 2 के कार्यालय में दिनांक 10 सितंबर 2026 को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। पात्र उम्मीदवारों की प्रक्रिया दिनांक 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए उन्हें कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों व उनकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना होगा। पदों के विषय में आपको बता दें, सामान्य वर्ग के 24 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के 9 पद तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पद अर्थात कुल 42 पद भरे जाने हैं। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई है, परंतु अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है। आवेदक हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का सदस्य होना चाहिए या भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कम 10.2 स्तर की परीक्षा पास की होनी चाहिए अथवा इसके समतुल्य या सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र रखा होना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स और हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संचालित एलिमेंट्री फायर फोर्स कोर्स उत्तीर्ण किया हो। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस।

श्रोताओं, संगीत एक ऐसा एहसास जिसकी अपनी कोई एक भाषा नहीं होती। कभी गीत बनकर दिल तक पहुंच जाता है, कभी गजल बनकर कोई भूली हुई कहानी याद दिलाता है, तो कभी सुरों की ऐसी दुनिया रच देता है जहां कुछ पल के लिए हम खुद को भूल जाते हैं। इन्हीं विविध रंगों, विविध अंदाजों और सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत कार्यक्रम सबरस में। शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की उस आवाज से जिसकी गजलें सुनना यानी शब्दों को महसूस करना। गुलाम अली की आवाज में पेश है ये बेहद खूबसूरत सी गजल।

कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। किसी गजल से दर्द दिल में अपनी जगह बना लेता है तो किसी गीत में वही दिल मोहब्बत के रंग में रंग जाता है। गुलाम अली की गजल में जहां गम की कहानी अधूरी रह गई, वहीं अब दिल शायद उस कहानी का एक खूबसूरत सा दूसरा पहलू सुनना चाहता है। वह पहलू है मोहब्बत का। अदनान सामी की आवाज़ में आइए सुने ये बेहद खूबसूरत सा मोहब्बत भरा नगमा।

संगीत के विविध रूप ओढ़े कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं। समय आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप हमें सुन रहे हैं। इस वक्त मोहब्बत के रंग से रंगा ये खूबसूरत सा नगमा भी आपने सुना, लेकिन इश्क की दुनिया सिर्फ किसी की आंखों, बाहों और जुल्फों तक कहाँ रुकती है। कभी यही इश्क धीरे धीरे रूह तक उतर जाता है और फिर मोहब्बत इबादत सी महसूस होने लगती है। इसी रूहानी एहसास के साथ कार्यक्रम में अब सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ को इस सूफी कलाम में।

अभी आपने आनंद लिया नुसरत फतेह अली खां के सूफी कलाम का। कार्यक्रम सबरस में आज बस इतना ही। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय हम बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या और न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता

0: तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्री बाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थान

0: और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे सेल्फ अश्योर्ड। हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
6: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।

0: .in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pinch Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
5: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर रात के 9:15 हुए हैं। कुछ देर में आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम हिमदर्शन।

के कर्मचारियों व पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन। भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। और आज देश सहित प्रदेश भर में मनाया गया शिक्षक दिवस। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से किया सम्मानित। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। इधर प्रदेश के मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा।

0: राजधानी शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी रही।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शिमला के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर शहर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर और बालूगंज के गोपाल मंदिर में रात को विशेष धार्मिक कार्यक्रम। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा। गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा। सुबह भगवान का विधिवत पूजन और श्रृंगार होगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाएंगे। दिन भर भजन कीर्तन से भगवान की लीलाओं का गुणगान हो।
0: उधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ ही चंबा जिला की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा का आगाज हो गया। आधिकारिक रूप से ये यात्रा राधाष्टमी यानी 19 सितंबर तक चलेगी। मणिमहेश डल झील में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सामने स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन किए। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा पर आते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वहीं जगह जगह लंगर की व्यवस्था के अलावा मेडिकल, घोड़े खच्चर, अस्थायी आवास, संचार सेवा और हेली टैक्सी की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है।
2: इस बार आम श्रद्धालुओं के कुकती ट्रैक से मणिमहेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पग उठाते हुए प्रशासन ने छोटी प्लास्टिक की बोतलों व छोटे चिप्स के पैकेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो वही यात्रा ट्रैक पर नशीले पदार्थ बेचने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान दंझो में BSNL का मोबाइल टावर भी स्थापित किया गया है, जिससे पहली बार यात्रियों को संचार सुविधा मिल पाएगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में PPP व EAP मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाने के लिए सरकार तैयार है और इसमें निजी निवेशकों का स्वागत किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय अवस्थी के मूल सवाल और विधायक हंसराज, राकेश कालिया, केवल सिंह पठानिया व सुधीर शर्मा के रोपवे संबंधी अनुपूरक सवालों के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजनाओं की लागत अधिक होने के कारण कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में रोपवे लगाने के लिए टेंडर के आकलन में इसकी लागत करीब 2700 करोड़ रुपए आई और अधिक लागत के कारण इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JBT और TGT के कुल 5209 पद खाली हैं। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन कुमार काजल, हंसराज, जीतराम कटवाल और दलीप ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि JBT के सबसे अधिक 4019 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक TGT के कुल 1190 पद रिक्त थे और इनमें से 764 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दल भाजपा ने इसे विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता में दखल बताते हुए इसका विरोध किया, जबकि सरकार ने कहा कि संशोधन से भर्ती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ युवाओं को मेरिट आधार पर अवसर मिलेंगे। प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय इस संशोधन विधेयक के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संशोधन से विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायक आचार्य की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जबकि सह आचार्य और आचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करेगा।
3: ये जो बिल है ये उन पढ़े लिखे युवा साथियों की आवाज है जिनकी कोई आवाज नहीं। वो मेरिट पर थे, यूनिवर्सिटी में लगना चाहते थे, नेट सेट क्वालिफाई था, PhD कर ली गई थी, मेरिट थ्रू आउट लाइफ मेरिट में रहे और उनको यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। जो युवा जीवन में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसने कोई सपना देखा होता है और जब उसका सपना इसलिए पूरा नहीं होता, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था ये बिल उस अन्याय को दूर करेगा।
0: राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने OPS बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया।

0: इस मौके पर बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी इससे वंचित हैं। हीरालाल वर्मा ने बिजली बोर्ड में खाली पड़े पदों को भरने की भी सरकार से मांग की।
1: आज बिजली बोर्ड का कर्मचारी 3.5 सालों से पुरानी पेंशन से वंचित है। देश के सरकार के जो कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन लागू हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी उससे वंचित है। देरी करके कर्मचारियों में बड़ा संशय है और इस करके आज हजार कर्मचारी यहाँ आए। मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से प्रदेश सरकार और आए यहाँ जो पुरानी पेंशन बड़े समय से लंबित है उसकी घोषणा करें। अगर स्वाति के प्रदेश सरकार होगी बिजली बोर्ड में लागू नहीं करेगी तो एक लंबा आंदोलन को लेकर प्रदेश में लड़ा जाएगा।
0: प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने के फैसले के खिलाफ भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का ये फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही है और अब लॉटरी भी शुरू कर दी है।
2: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बेतुका तर्क जो है वो हमारे सामने रखा है कि हिमाचल आर्थिक कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है। ऐसे में हमको अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। पहले टैक्सेस का दौर शुरू हुआ, लेकिन एक फैसला और बहुत अटपटा फैसला लिया गया, वो फैसला कि हिमाचल प्रदेश में हम लॉटरी शुरू करेंगे। और लॉटरी के लिए तर्क ये दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इससे किसी को आदत नहीं पड़ेगी, ये तो भाग्य का खेल। और सब लोग इस बात को लेकर के हैरान है कि मुख्यमंत्री जी जो तर्क दे रहे हैं।
0: इस बीच प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र 3 सितंबर को राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित ये सत्र कुल 45 घंटे 30 मिनट तक चला और सदन की प्रोडक्टिविटी 91% रही। कुल 514 तारांकित और 272 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। नियम 62 के तहत 14 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार गारंटी पर लंबी चर्चा हुई। सत्र के दौरान 11 सरकारी विधेयक पेश हुए और पारित भी हुए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि अब विधानसभा की तरफ से विधायकों की गाड़ी में आधिकारिक झंडी लगेगी। इससे खासकर नए विधायकों को हर जगह अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, निश्चित तौर पर उन पर चर्चा होनी चाहिए। 545 लगे थे, सबके उत्तर जो है सभी सामान्य सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कुछ चर्चा में नहीं आए हैं तो डिस्कशन है उसमें मान्य सदस्यों ने किया है और आगे जो सत्र होगा उसमें कर देंगे। सभी सामान्य विधायकों को एक डिसिंग फ्लैग मिलेगा जो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है लगेगा।
0: संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई अहम बिल पारित हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही।
4: माहौल में जो है वो चला है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिन या दो दिन बहिष्कार किया गया, सुचारू रूप से चला और बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज पे सदन में चर्चा हुई है और जो अच्छे सुझाव थे तो सरकार और मुख्यमंत्री जी ने माना है। सुचारू रूप से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सेशन बहुत अच्छा चला है।
0: दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जल्दबाजी में थी और सदन का माहौल अफरा तफरी वाला रहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी सरकार को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और सदन के भीतर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
2: जो एक्ट यहाँ विधानसभा के अंदर लाए जा रहे हैं उसमें सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। एक नहीं अनेक ऐसे फैसले जो विधानसभा के अंदर बिल के रूप में पारित हुए, लेकिन उसके बाद वो बिल हाईकोर्ट ने सदन के अंदर सार्थक चर्चा करने का प्रयत्न किया, जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयत्न किया और जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश विपक्ष की ओर से ईमानदारी से हुई।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और हिमाचल से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवहन मुद्दों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन संचालकों की लंबित मांग के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। अग्निहोत्री ने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य आयु सीमा को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। 16वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को मिलने वाली धनराशि जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के

0: प्रदेश सरकार के आदेशों का सिरमौर जिला के नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। पांवटा साहिब विकास खंड की 22 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने प्रधान संघ के बैनर तले नाहन में उपायुक्त के साथ बैठक कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है।
1: जो हमने अपनी पांवटा संघ की जो डिमांड रखी है, जो हमारी प्रधानों को समस्याएं आ रही है, ऐसे पंचायतों में सेटरी का एक या दो दिन होना, क्योंकि पंचायतें ज्यादा है, सेटरी कम है, जीआरएस कम है, तो उसकी वजह से हमने डीसी मैडम के पास अपनी समस्याएं रखी हैं।
0: मॉनसून सीजन में स्क्रब टाइफस और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। शिमला जिले में स्क्रब टाइफस के अभी तक 24 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल रांटा ने कहा कि स्क्रब टाइफस संक्रमित लार्वा माइट के काटने से होता है, जो घास, झाड़ियों और घनी वनस्पति वाले इलाकों में पाया जाता है। डॉक्टर रांटा ने कहा कि समय पर पहचान होने पर इस रोग का इलाज संभव है और जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं।
2: अभी तक हमारे पास स्क्रब टाइफस के 24 का केसेस आए, ये सारे हैं तो स्कैटर्डली। जो स्क्रब टाइफस होता है, एक माइट सा होता है, उसका लार्वा उसके बाइट से होता है। यूजुअली जहाँ डेंस फॉरेस्ट हो, झाड़ियाँ हो, काफी लंबी घास हो, वहाँ पे ये माइट होता है, और जो भी आपका एक्सपोज्ड एरिया होता है उसको अगर बाइट करेगा तब स्क्रब टाइफस का इंफेक्शन हो जाता है।
0: आज देश सहित प्रदेश भर में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह लोक भवन शिमला में आयोजित किया गया। 5 सितंबर का दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में शिक्षक की अहम भूमिका है। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन शिमला में 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और सभा के अंत में समाचार भी आप सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
1: व्यक्ति और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म भूषण ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली।

0: आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
1: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था। और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था, बल्कि सार्वभौम दुख था। और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बाँच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बाँच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा जिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथे संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथे बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसा कर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था। लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है। यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में मनोहारों में, क्या आंसू में उद्गारों में, आवाहन में अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है। तो

0: अब क्या अनुनय और क्या मनोहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार। अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है, और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ, संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, 2 दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है, और ना मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है, न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शत बार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वो अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं, जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं। कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: तो कहते हैं महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात लिखते हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो 8वें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निजा में जाके गीत का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानव दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम

0: नाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुककर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनत कश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साए में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
1: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
0: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया, वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
2: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साए में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
3: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
2: जी,
3: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
2: जी,
3: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
2: जी।
3: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
2: जी।
3: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदास मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
2: जी,
3: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
2: जी।
3: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
2: जी।
3: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया। और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बन गई।

0: जो डिक्शनरी जो
1: हाँ बिल्कुल
0: जो शब्द कोश का मतलब है गजल का उसमें
1: जी
0: वो
1: जी
0: है औरत से बातचीत करना,
1: बिल्कुल बिल्कुल गुफ्तगू।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना इसका क्या मतलब, तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया। और तब के शायरों ने औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत की गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी बिल्कुल,
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय वो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद। ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता,
1: रिक्शा वाला भी समझ सकता है
0: और एक प्रोफेसर भी समझता,
1: एक प्रोफेसर भी समझ सकता
0: है। ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
1: हाँ,
0: मैं किसी पुल सा
1: थर थर,
0: अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: कि ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो संगठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है।
1: जी जी।
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए

राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं, परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने, बल्कि नोटशीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में खा क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। खा से खा क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है, तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज

अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

0: ये आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी घंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी वेंकटा सुब्बारामा शास्त्री से सीखी, जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलेडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री VSP गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, known for his exceptional artistry and musical sensitivity. He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned mridangam vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrama Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Shri Varanasi Kali Prasad Babu apne mridangam lay vinyas ka aarambh chaturashtra jati triput tal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज की इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Laivinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Shri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaro, Kalidas Samaro, and Chakradhar Sangeet Samaro, Vithalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Shri Vithal Kumar Rajpura is presenting Jhap Taal on the Pakhavaj. He is accompanied on the Sarangi by Shri Jagdish Barot, providing the Lehra.

तक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक धा किटक ध

ता गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते

वेदम आड़ सुनिए

परमेश्वर चक्र था।

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्षपान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृषपान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृषपान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपला सी चमकत चंद्र मुखीरा।

प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

0: ये आकाशवाणी है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी।

0: महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Shri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Shri Ram and bowed to his enduring vision. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions, and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. Earlier today, President Murmu conferred the National Teachers' Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the President. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Siaf Rubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief.